मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। श्रोताओं, मैं हूँ इस सभा में आपके साथ जितेंद्र कुमार। सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशकांत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये देश गान। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली प्रस्तुति, हनुमान वंदना।

श्रोताओं, अभी अनूप जलोटा को आप सुन रहे थे इस भजन में। आइए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनते हैं। स्वर विजोया चौधरी का है।

0: श्रोताओं, इस भजन के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। जीवन मूल्यों का संवर्धन, दुर्भावनाओं का शमन विषय पर आज चिंतक हैं तुलिका शर्मा।
1: मोटे तौर पर देखें तो वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन का जो टर्म है, ये अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। खरीद फरोख्त के मामलों में हम किसी भी उत्पाद या प्रोडक्ट की कीमत प्रोसेसिंग द्वारा जब बढ़ा देते हैं तो उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। यदि इसे सीधे सीधे शब्दों में समझाया जाए तो इसका अर्थ ये है कि अपने उत्पाद को बेहतरीन बनाकर सही जगह पर और सही समय पर बेचना, जिससे लागत मूल्य से कहीं ज़्यादा हम उसे बेच सकें और हमें अधिकतम मुनाफा हो सके। मान लीजिए हमने टमाटर की फसल पैदा की और हमने उसे स्थानीय बाजार में बेच दिया और हमें टमाटर की अधिकतम कीमत मिली 10 रुपये प्रति किलो। लेकिन उन्हीं टमाटरों में से हमने अच्छे टमाटरों को छांट कर अलग किया, उसकी बढ़िया पैकेजिंग की और उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में रख दिया। उसकी पैकेजिंग पर हमने 2 रुपये खर्च किए, लेकिन उस डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें उसकी अधिकतम कीमत मिली 20 रुपये प्रति किलो। यानी हमने थोड़ी सी मेहनत उन टमाटरों पर की और हमने उसके मूल्य का संवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया। ये पैकेजिंग जो थी वो उस उत्पाद का वैल्यू एडिशन थी। ये जीवन का भी अर्थशास्त्र है। श्रोता साथियों, हमें अपने जीवन में भी जीवन मूल्यों का वैल्यू एडिशन करते रहना चाहिए। थोड़ा अपने जीवन की बैलेंस शीट को गौर से देखिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप पहचाने जाते हैं? किस तरह से लोग आपका दूसरों से परिचय कराते हैं? किसी को मास्टर साहब कहकर संबोधित किया जाता होगा, किसी से कहा जाता होगा कि ये पत्रकार हैं, किसी को अपने पिता के नाम से जाना जाता होगा, या इसी तरह जो व्यवसाय आप करते हैं उसके

0: आधार पर आप पहचाने जाते होंगे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम जिन गुणों से जाने जाते हैं उनमें हम कुछ इजाफा कर दें। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक किराने की दुकान है और उस दुकान का मालिक सही तौल, अच्छे उत्पाद और अपने बढ़िया व्यवहार की वजह से आसपास की लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो इसीलिए पहचाना जाता है। यदि वो अपने इस गुण को ऐसा ही बनाए रखता है तो उसकी पहचान में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि वो अपने व्यवहार को थोड़ा रूखा बना ले या अपने उत्पाद की क्वालिटी में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले तो यकीनन धीरे धीरे उसकी जो प्रसिद्धि है वो कम होती जाएगी। इसके ठीक उलट, यदि वो अपने छोटे से किराने की दुकान में आधुनिक साज सज्जा कर ले, लेन देन के तरीकों में डिजिटल मोड भी शामिल कर ले, जिस तरह के सामान वो अपनी दुकान पर रखता है उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे सामान रखे जिनकी रोज़ाना लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो ये उसके व्यवसाय में वैल्यू एडिशन होगा। लोगों को वो और भी अधिक अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा और उसकी पहचान एक और बढ़िया विक्रेता के रूप में हो सकेगी। उसकी पहचान में ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट सिर्फ इसलिए आया कि उसने अपने काम में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो लोगों को अच्छी लगी, भली लगी। इसी तरह हम जिस संस्थान से जुड़े होते हैं वो भी हमें पहचान दिलाते हैं। वो पहचान अच्छी होगी या ख़राब, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। यदि हम लगातार उस संस्थान के लिए अपना बेस्ट देंगे तो वो संस्थान उन्नति करेगा और संस्थान के उन्नति करने पर हमारी पहचान भी और पुख्ता होती जाएगी। हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वहाँ मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे संस्थान की छवि धूमिल होगी और उसी तरह हमारी छवि भी धूमिल होती चली जाएगी। इसलिए जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं वहाँ अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जैसा देते हैं वैसा ही प्रतिदान में आपको मिलता है। आप अपना बेस्ट देंगे तो बेस्ट प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई परीक्षा देता है, जितने अच्छे उत्तर लिखता है उतने ही अच्छे नंबर उसको मिलते हैं। तो जीवन की परीक्षा में भी यदि नंबर अधिक हासिल करने हैं और विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होना है तो हमें परिश्रम करना ही होगा, अपना बेस्ट देना होगा, जिससे हमारी जीवन की बैलेंस शीट बेस्ट हो सके। उसमें हम लगातार वैल्यू एडिशन करते रहें जिससे हमारे जीवन का बायोडाटा अपडेट होता रहे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, जीवन मूल्यों का संवर्धन और दुर्भावनाओं का शमन। इस विषय पर आज चिंतक थी तुलिका शर्मा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और प्रस्तुत है मानस कांत।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

0: श्रोताओं, ये थी आज की श्री रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज जानकारी का विषय है खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, सब्जी उगाने के पहले आप नर्सरी बनाते हैं, और नर्सरी जब बनाते हैं तो नर्सरी थोड़ी जमीन से 3-4 इंच ऊंची बनाएं, और उस नर्सरी में रोग लगने के पूर्व ही उसमें आप थायरम और कार्बन डाइजिम 50-50 ग्राम एक क्यारी में आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि नर्सरी में जब पौधे छोटे होते हैं तो उसमें तना विगलन और तना गलन नाम का रोग आ जाता है, और थोड़े से जब पौधे बड़े हो जाते हैं 15-20 दिन के 10 दिन के, तब उनमें हल्के हल्के गोल गोल धब्बे पत्तियों पर काले भूरे रंग के धब्बे आते हैं, और हमारी ये नर्सरी में ही पौधों को खराब कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब हम उनको खेत में ले जाते हैं तो हमारी ऐसे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, और जितनी हमें फसल मिलना चाहिए उतनी फसल नहीं मिलती है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें शुरू से ही नर्सरी से ही हमारे जो सब्जियों की कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए रोकथाम करना आवश्यक होता है। जब नर्सरी में पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, 4-5 इंच के हो जाएं, उस वक्त मैनकोजैब नाम की एक दवा आती है, 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके उसमें

0: नर्सरी में छिड़काव कर दें, 10-10 दिन के अंतर से दो बार छिड़काव कर दें, तो आपका जो ये पत्ती धब्बा रोग आते हैं ये रोग नर्सरी में नहीं आएंगे और नर्सरी में पौधे आपको एकदम स्वस्थ मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। ऐसे पौधों को आप फिर अपने खेत में वहाँ उनकी रोपाई करें। जैसे इसमें नर्सरी में आप जो है खरीफ में जो सब्जियों की फसलें हैं उसमें आपका टमाटर है, बैगन है, मिर्च है और आपके ये वाली फसलें लेते हैं। इस मौसम में किसान भाई बहुत आयात में भिंडी भी लेते हैं, तो इन सब फसलों में नर्सरी के बाद जब रोपाई करते हैं उसके बाद में फिर उसमें पत्ती धब्बा रोग अगर दिखाई दे तो आप मैनकोजेब नाम की दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में एक बीघा खेत के लिए पर्याप्त होती है उसका छिड़काव कर दें, तो पत्ती धब्बा रोग इसमें आपकी फसलों में नहीं आएगा। खरीफ के मौसम में विशेष रूप से खरपतवार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब्जियों में निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार अगर खेत में ज़्यादा होंगे तो उसमें कीट बढ़ने की संभावना होती है। कीटों में हरा मच्छर है, माहू है, जैसिड है, एफिड है और सफ़ेद मक्खी है, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है कोकड़ा रोग को फैलाते हैं या पीला मोज़ेक नाम के रोग को भी फैलाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये रोग ना अपने खेत में फैलें और हमारी जो सब्जियां हैं वो स्वस्थ और अच्छे पौधे हमारे खेत में मिलें, इसके लिए इन कीटों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कीट स्वस्थ पौधों में रोग फैला देते हैं। जो हमारे रोगग्रस्त पौधे हो जाते हैं उनका जो है रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद में ये स्वस्थ पौधों पर जाते हैं और वहाँ भी रस चूसते हैं, तो जो इनके वायरस के विषाणु के इनके पेट में जाता है, कीटों के पेट में, इसके बाद में ये स्वस्थ पौधों पर उस रस को छोड़ देते हैं और हानिकारक और जो रोगग्रस्त पौधों के रस चूस करके आते हैं, तो इस तरह धीरे धीरे ये पूरे खेत में ये कोकड़ा रोग और पीला मोज़ेक रोग फैल जाता है। तो अगर इस तरह का रोग आपको खेत में दिखाई दे तो सबसे पहले आप ऐसे रोगग्रस्त पौधों को निकाल करके और गड्ढे में डाल करके उसको मिट्टी से बंद कर दें या नष्ट कर दें और साथ साथ दवाई का छिड़काव भी करें। दवाइयों में आप जो है मेलाथियन दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियन दवा जो बाजार में उपलब्ध है, इसके अलावा एक दवा और है डाइमेथोएट, इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा लें। ये दवा जो है 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करना है। जैसे अगर एक बीघा आपका खेत है, सब्जी लगी हुई है, तो उसमें 150 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो हमारी जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं इनमें आपका कीट नियंत्रण आसानी से हो जाएगा।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खरीफ सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जेसी गुप्ता। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। अब सुनिए सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से

0: हर शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
1: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
0: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स।
4: श्रोताओं, ये था आज का सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार होंगे।
5: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा कर विषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकं 20-26 इति पारितम्। राज्यसभया ह्यः चर्चानन्तरम् एतत् लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् विधेयकं पूर्वमेव पारितमासीत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण विधेयकं प्रस्तुतवती आसीत्। विधेयकेन धनप्रदान परिशोधन व्यवस्थाधिनियमः 27-2000 आयकराधिनियमः 20-25 तथा वित्ताधिनियमः 20-26 चेत्येषु संशोधनं प्रस्ताव्यते। अनेन अधिनियमेन आयकर संशोधन अध्यादेशः 20-26 इति प्रभावहीनः भविष्यति, यः अस्य वर्षस्य जून मासस्य 5 दिनाङ्के प्रख्यापितः आसीत्। चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददति केन्द्रीय वित्तमन्त्री अवदत् यत् विधेयकस्य उद्देश्यं भारतस्य विनिर्माण परितन्त्रस्य सुदृढीकरणम्, अतिरिक्त निवेशस्य आकर्षणम्, आजीविकायाः सृजनं तथा विनिर्माण गतिविधीनां प्रोत्साहनं वर्तते। सा अवदत् यत् द्वितीयः प्रमुखः संशोधनः भारतस्य निर्दिष्टेभ्यः दत्तांशकेन्द्रेभ्यः दत्तांशसेवाः प्राप्नुवतीनां वैदेशिकसंस्थानां करमुक्तिप्रदानेन अथ व्यवसायसञ्चालनस्य च सुगमतायाः वर्धनेन सम्बन्धितः अस्ति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विधेयकेन UPI इति प्रयोक्तृभ्यः कश्चन करः उत वा व्यवहारशुल्कं न आरोप्यते। संसदा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 अपि पारितम्। राज्यसभया तत् ह्यः अनुमोदितम् आसीत्, एवञ्च लोकसभया तत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। प्रशासनेन 11 नूतनानि अन्ताराष्ट्रियपत्तनानि अधिसूचितानि, येन ई वीजा धारकानां वैदेशिकनागरिकाणां भारतप्रवेशः सुलभः भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु 9 भूपत्तनानि, 2 च विमानपत्तने सम्मिलिते स्तः। एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते। मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 2-7 होरातः न्यूनसमये निस्तारयति। नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजा धारकाणां वैदेशिकनागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रियपत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता। एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयू

0: कूशगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदं उच्च गुणवत्ता युक्तस्य उचित मूल्येन उचित समये उचित उत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिंबयति। नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य दशवर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मंत्री उक्तवान्। श्री गोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिक धनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्री गोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन त्रिकोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां वस्तूनां सेवानां च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीज़ा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीज़ा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके

के पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा प्रातः 7:20 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। सुबह 8:30 स्टूडियो से हम प्रसारित करेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में कलाकार होंगे हरगोविंद कुशवाहा और साथी। सदस्यगण के नाम इस प्रकार हैं: शिव चरण कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा, हरि सिंह कुशवाहा, लाला राय कुशवाहा, हरिमोहन वंशकार, घनश्याम कुशवाहा, मनोहर। प्रातः 9:00 कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन पाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 स्टूडियो से आप सुनेंगे वीणा जोशी का गाया राग तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे सुबह 10:00। दिन में 11:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दिन में 12:00 से।

संग्रहालय से ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम दोपहर 1:00, लोक संगीत का कार्यक्रम 1:30 पर, सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होगा और ये तीनों ही कार्यक्रम इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2:00 सुनेगा फिल्म संगीत, 2:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे और 2:15 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे दोपहर समाचार जो दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। चित्रपट संगीत सुनेगा दोपहर 2:30 पर। अपराह्न 3:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रम।

और श्रोता साथियों, एक नज़र डाल लेते हैं हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कुछ कार्यक्रमों पर। शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे, 5:02 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा 5:33 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे शाम 6 बजे, 6:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। आज कार्यक्रम में कलाकार होंगे उत्तम सिंह यादव और साथी, आप सुनेंगे आपके गाए लोकगीत मल्हार। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी लेकर आएंगे शाम 7:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा, 8:15 पर सुर्खियों में कार्यक्रम और 8:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस बल और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। भोपाल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल नवीन भर्ती में चयनित पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों को बैज लगाए। मुख्यमंत्री ने खंडवा में नई पुलिस बटालियन गठित करने और प्रदेश में 3 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की।
1: हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए। खंडवा के साथ साथ और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये 3 बटालियन बनाने की घोषणा कर। हम ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लिए बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी वर्ग से हमारा ये एक समूह, इसमें बड़ी संख्या में लोग आए।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप कोष जारी किया। इसके अंतर्गत 6,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिल सकेगी।
2: पिछले साल जब हमने विद्यार्थियों का एग्री स्टूडेंट्स का सम्मेलन किया था, तो ये बात आई थी कि स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो पहले यूनिवर्सिटी में जाती है, यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में जाती है, और फिर स्टूडेंट्स के पास जाते जाते बहुत समय लग जाता है, और कई बार तो इतना देर से पहुंचती है कि परीक्षा ही हो जाती है। इसलिए समय पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले, इसका शुभारंभ हुआ है DBT के माध्यम से, सिंगल क्लिक से स्कॉलरशिप 6,080 विद्यार्थियों के खाते में पहुंची है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और परिषद की सहमति से मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद राज्य वन प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव VC के माध्यम से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते कल मंत्रालय में प्रदेश में मूंग खरीदी कार्य की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी कार्य में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोषी पाए जाने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि केंद्र से प्रदेश के लिए करीब 4,54,000 टन मूंग खरीदी का लक्ष्य मिला है और करीब 3,47,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 3,42,000 किसानों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां बारिश को ले मद्देनजर करके रखी जाएं, तथा 10 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला और राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, जलाशयों की निगरानी और राहत शिविरों की तैयारी तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में समय पर चेतावनी देने के निर्देश दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल यानी 12 अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। वे प्रदेश में निवेश के अवसरों, औद्योगिक नीतियों और निवेशक सुविधाओं की जानकारी देकर उद्योग समूहों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से 1-on-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए भी गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि, जलभराव, बाढ़, जर्जर भवन गिरने और वज्रपात जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य संभाग और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कल बताया कि कंट्रोल रूम संबंधित विभागों के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू करने की स्वीकृति दी है, जिनमें विदिशा जिले का शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा, शाजापुर जिले का जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर और आगरमालवा जिले का शासकीय महाविद्यालय सोयत कलां शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि संस्कृत के अध्ययन का विस्तार विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, रंगोली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं झाबुआ में आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सहभागिता से तिरंगा रैली, रंगोली और मानव श्रृंखला आयोजित की गई। राणापुर जनपद की ग्राम पंचायत ढोलियावड़ में विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं डिंडौरी में जिला मुख्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगी, जबकि धार में नालछा विकासखंड के ग्राम जीरापुर स्थित ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर परिसर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में भारतीय साड़ी, हथकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 13 प्रतिभागियों ने बंगाली, महाराष्ट्रीयन, नवारी, बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी सहित विभिन्न पारंपरिक साड़ियों की प्रस्तुतियां दी। भोपाल में आज से 16 अगस्त तक अपर लेक स्थित बोट क्लब में राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तकनीकी मार्गदर्शन में होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 ज्यूरी सदस्य भी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से साइबर जालसाजों से सावधान रहने और बिजली बिल का भुगतान केवल अधिकृत माध्यमों से करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी मोबाइल नंबर से बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर भेजे जाने वाले SMS, व्हाट्सएप संदेश और फोन कॉल फर्जी हो सकते हैं। उपभोक्ता अनजान नंबर पर बिल की राशि ट्रांसफर न करें और अपना पिन या बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना दें। अब रुख करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर हैं, कई जगह आपदा की स्थिति बन गई है। राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल एवं होमगार्ड्स की टीमों ने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। होमगार्ड सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को क्षेत्रीय टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। दिनभर चले इन अभियानों के दौरान जवानों द्वारा 98 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर राहत पहुंचाई गई। वहीं मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर कला और जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के 2026-31 बैच की शुरुआत इंडक्शन कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें 156 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आगरमालवा में भारी बारिश के चलते कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने सभी स्कूलों में आज यानी मंगलवार का अवकाश घोषित किया है। खंडवा में सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डीमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डीमर ने भोपाल के लोअर लेक में आयोजित नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में 6 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। मंदसौर की समय सीमा की बैठक में कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के शिविरों की पूर्व तैयारी कर 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। सतना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन 12 अगस्त तक संजीवनी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मूंग खरीदी में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री कल अहमदाबाद में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के
2: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आशा का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावारिस का ये गीत। स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार का है। अनजान का लिखा ये गीत है, उसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
3: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सन्यासी का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। विश्वेश्वर शर्मा का लिखा ये गीत था और इसे संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म समधी का ये गीत। गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और इसके लिए धुन तैयार की है आर डी वर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल से ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में ये गीत था। गीतकार थे अनजान, संगीतकार बप्पी लहरी। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। अमित कुमार, लता मंगेशकर का गाया ये गीत है। गीतकार है आनंद बख्शी। धुन तैयार की है आर डी वर्मन ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है लोफर, आशा भोसले की आवाज़ है। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
6: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
7: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
8: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
5: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
9: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
5: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
10: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
5: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
11: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा

0: यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
2: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वही अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया।

0: Shagun.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in Western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं हरगोविंद कुशवाहा और साथी। आप के साथ अन्य सदस्यगण भी हैं, शिवचरण कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा, हरि सिंह कुशवाहा, लाला राय कुशवाहा, हरी मोहन वंशकार, घनश्याम कुशवाहा और मनोहर। लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपके गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस वर्षा गीत के साथ।

श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं हर गोविंद सिंह कुशवाहा, हर गोविंद कुशवाहा और साथी, और आप सुन रहे हैं आपके गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, इस मल्हार गीत के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, कुछ ही पलों में इस घंटे की खास खबरें सुनिएगा भोपाल केंद्र से।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद राज्य वन्य प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में नवीन भर्ती में चयनित पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं खंडवा में नई पुलिस बटालियन गठित करने और प्रदेश में 3 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा भी की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप कोष की 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की। कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने समय पर DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रदेश में 4,54,000 टन मूंग खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक मूंग खरीदी के लिए करीब 3,47,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। भोपाल में आज से 16 अगस्त तक अपर लेक स्थित बोट क्लब में राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग की इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। और प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई बारिश के बाद अब मानसून फिर तेजी से सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर कला जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजते हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ। तो चलिए, फिलहाल हम आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं लेटेस्ट न्यूज़, कुछ खास खबरें, रोचक जानकारियाँ जिन्हें आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको लाभ अवश्य पहुंचेगा। तो इसके साथ ही ढेर सारा गीत संगीत तो होता ही है। तो चलो साथियों, देर किस बात की है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम एक ज्ञान की बातें आपको बताते हैं जो आपके जीवन में अवश्य ही लाभ पहुंचाएगी। जब हमारा मन इच्छाओं और सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है तब छोटी सी समस्या भी बड़ी लगती है। किसी भी प्रकार का संघर्ष, दुविधा या प्रतिकूल परिस्थिति हमें तभी व्याकुल करती है जब हम अपनी इच्छाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब मन भारी परिस्थितियों, इच्छाओं और सुख सुविधाओं के अधीन रहता है तब छोटी सी चुनौती भी बड़ी समस्या लगती है। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और मन को संयमित और अनुशासित, मर्यादित बना लेते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर स्टेबिलिटी, स्थिरता और शांति उत्पन्न होने लगती है। मन शांत रहेगा तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, मन विचलित नहीं होगा। आत्मसंयम हमें दुविधाओं से ऊपर उठाकर धैर्य, विवेक और संतुलन के साथ जीवन जीने की शक्ति देता है। दोस्तों, एक बात और हम शेयर करना चाहते हैं स्पर्धा के बारे में। स्पर्धा हमें, यानी कंपटीशन, हमें आगे बढ़ने और ऊंचे लक्ष्य तय करने की प्रेरणा देती है। यदि हमारे भीतर आगे बढ़ने का उत्साह और दूसरों से बेहतर करने की इच्छा ना हो तो प्रगति रुक जाती है। हम सभी किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ने की दौड़ में हैं। कोई खूब पैसा कमाना चाहता है तो कोई पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है तो कोई बड़ा घर, गाड़ी या जीवन की अन्य उपलब्धियां हासिल करने का लक्ष्य रखता है। स्पर्धा हमें निरंतर प्रयास करने और नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने ग्वालियर शहर की। और ग्वालियर शहर में इन दिनों चल रहा है सावन मेला। व्यापार मेला मैदान में चल रहे सावन मेले में सोमवार को बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। शाम ढलते ही मेला परिसर रोशनी और लोगों की चहल पहल से गुलजार हो गया। बच्चों से लेकर युवाओं, परिवारों तक हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ मनोरंजन के साथ खरीदारी और खान पान की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। मेले में सबसे खास आकर्षण नियाग्रा वाटरफॉल थीम पर तैयार किया गया LED वाटरफॉल है। रंग बिरंगी रोशनी से सजे इस आकर्षण के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ पहुँचने वाले लोग तस्वीरें और वीडियो बनाकर इस नए आकर्षण को यादगार बना रहे हैं। शाम के समय रोशनी के बीच वाटरफॉल का दृश्य खास तौर पर लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस बार मेले की सजावट में पारंपरिक स्वरूप के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि मनोरंजन के पुराने साधनों के साथ LED आधारित आकर्षण भी लोगों को पसंद आ रहे हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अगर सरकारी नौकरी की तैयारी का विचार भी कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। हमारे शहर के कॉलेज के विद्यार्थियों में अब केवल डिग्री हासिल करने तक ही सीमित रहने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। इसके विपरीत ग्रेजुएशन और PG की पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें सरकारी नौकरी की तैयारी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। छात्र अपने कॉलेज के सामान्य अध्ययन के साथ साथ UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षाओं के व्यस्त शेड्यूल के बीच से भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोज़ाना एक निश्चित समय निकाल रहे हैं। विद्यार्थियों का मानना है कि कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव रख देने से उन्हें भविष्य में अत्यधिक लाभ मिलता है। इससे समय का सदुपयोग तो होता ही है, साथ ही ग्रेजुएशन पूरा होते होते छात्र परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम से पूरी तरह वाकिफ हो जाते हैं। आज के समय में सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में कॉम्पिटिशन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए छात्र किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच सोमवार को रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल देशभक्ति के रंग में रंग गया। यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बैंड ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की थीम पर भव्य संगीतमय प्रस्तुति दी। बैंड की ओजपूर्ण धुनों से समाधि स्थल परिसर गूंज उठा और उपस्थित लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना का संचार हुआ। स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। स्वतंत्रता दिवस समारोह की श्रृंखला के तहत ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्वालियर परिसर में सुबह 7 बजे योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इसके बाद ग्रुप केंद्र के मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति गौरव की भावना को मजबूत करना रहा।

दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ग्वालियर के मौसम की। लगातार दूसरे दिन ग्वालियर शहर ऊपर से आंशिक रूप से बादलों की मौजूदगी बनी रही। अधिकतर समय धूप खिली रही और हवा में मौजूद नमी के कारण लोगों को भीषण उमस ने भी परेशान किया। पारा एक बार फिर बढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को गर्मी ने परेशान किया। प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले ग्वालियर में दिन सबसे ज़्यादा गर्म रहा। वहीं दूसरे नंबर पर खजुराहो रहा, जहां पारा 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। शहर में पिछले दो दिनों से मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई है, इसके चलते तापमान में उछाल दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को आसमान में बादलों की आंशिक मौजूदगी के कारण खिली तेज धूप ने पारे और में और बढ़ोतरी कर दी। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार को अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़त के साथ 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है इस गीत का।

दोस्तों, आज खुदीराम बोस बलिदान दिवस है। अमर शहीद खुदीराम बोस का बलिदान दिवस हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1908 में मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में इस युवा क्रांतिकारी ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। इनके जीवन के कुछ ऐतिहासिक प्रसंग हम शेयर करना चाहेंगे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था इन्होंने। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी। वे भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में गिने जाते हैं।

दोस्तों अब हम बात करते हैं करियर अलर्ट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट MPCG में कैंटीन अटेंडेंट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन सरकारी नौकरी का सपना देख रहे ऐसे युवा जो 10वीं उत्तीर्ण हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट MPCG की ओर से कैंटीन अटेंडेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू हो जाएगी यानी आज से। भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त सन 2026 निर्धारित की गई है।

दोस्तों इस गीत को गाया अरिजीत सिंह ने, फिल्म का नाम था क्रिएचर। दोस्तों अब समय हो चला है कि हम कार्यक्रम को यहीं पर समेट लें। अगले कार्यक्रम में कुछ रोचक जानकारियों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ और ढेर सारे गीत संगीत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है वीणा जोशी का गाया राग तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वीणा जोशी का गाया राग तोड़ी। इस प्रस्तुति के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं, जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: सिंगरौली जिले में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने बीते दिनों बैठक ली। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी और पूरी गरिमा के साथ आयोजित किया जाए। इस अभियान के दौरान तिरंगा रैलियों सहित विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ा जाए। उन्होंने जिले के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने के लिए नागरिकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने उपखंड अधिकारियों और एसडीओपी पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तिरंगा रैली के समय और मार्ग निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय मुख्य तिरंगा रैली 14 अगस्त को चून कुमारी स्टेडियम नगर निगम क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयुक्त नगर पालिक निगम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। विकासखंड स्तर पर आज जियावन और 13 अगस्त को चितरंगी और बरगवां में तिरंगा रैलियां आयोजित की जाएंगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरवाह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदन, स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। सिंगरौली जिले में ग्राम पंचायतों के विकास में ग्राम सभा और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं जिले में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी मिल रही हैं। इसी श्रृंखला में चितरंगी के सामुदायिक भवन में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधा सिंह ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास जनता की वास्तविक सहभागिता और ग्राम सभा की सहमति से ही होना चाहिए। एनसीएल के केंद्रीय चिकित्सालय सिंगरौली और एनएससी जयंत सामुदायिक केंद्र मोरवा में मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और नेत्र रोग से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं दी। लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी इस मौके पर वितरित की गई। करीब 150 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। नगर निगम सिंगरौली की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पात्र रेहड़ी पटरी और फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वार्ड क्रमांक 18 स्थित आवासीय परिसर केंद्रीय कर्मशाला जयंत के समीप एक विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका नियमानुसार परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चितरंगी पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत 10,40,000 रुपए बताई गई है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक सिंगरौली सियाज केएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार 6 आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सिंगरौली में प्रशासन ने विद्यालयों की व्यवस्थाओं और बच्चों की सुविधाओं को लेकर भी सख्ती दिखाई है। कलेक्टर गौरव बैनल ने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिद्धिकला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में बच्चों से सफाई कार्य कराए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित प्रधानाध्यापक की एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में परिसर की साफ सफाई अनिवार्य रूप से वॉश ऑन व्हील के माध्यम से सफाई मित्रों द्वारा ही कराई जाए। कक्षाओं में लगाए गए स्मार्ट स्क्रीन बोर्ड बंद पाए जाने पर भी कलेक्टर ने असंतोष जताया और उन्हें शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शासकीय मेडिकल कॉलेज सिंगरौली के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने की पहल की गई है। इस मेडिकल कॉलेज परिसर में एक आधुनिक एक्रेलिक बास्केटबॉल कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक बिलियर्ड्स कक्ष, 2 टेबल टेनिस टेबल और 3 बैडमिंटन कोर्ट विकसित किए जाएंगे। सिंगरौली जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। श्रोताओं अप्रस्तुत हैं। व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार। व्हाट्सएप

एमआई फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुनते हैं अपनी पसंद के फरमाइशी गीत हमारे इस कार्यक्रम में, जिन्हें आप व्हाट्सएप के द्वारा फरमाइश करके हमें भेजते हैं और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, देर किस बात की है, श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। और आप सुनेंगे ये कार्यक्रम आज मेरे साथ। पहला फरमाइशी गीत तो हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से, अलका याज्ञिक और हंसराज हंस की आवाजें हैं, नुसरत फतेह अली खान का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है। और फरमाइश हमारी इन श्रोताओं की है, मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली पंडरपुर तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुमताज़, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, चाचा चाची और पूरा मुलाणी परिवार। साथ ही इस गीत को पसंद किया है गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षता लोखंडे और पूरा लोखंडे परिवार। जिला पश्चिम सिंहभू चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। चलिए सुनते हैं फिल्म कच्चे धागे का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कलंक का ये गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ें थी, फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख, मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से हमें फरमाइश भेजी थी इन्होंने। हमारे और भी श्रोता हैं जो इस गीत को पसंद करते हैं, मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगणकर, साखर बाई कंगणकर, परमेश्वर रोहिणी श्रावणी ईश्वरी कंगणकर परिवार। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रांति का ये गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ें हैं। संतोष आनंद का लिखा ये गीत है और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम

संदलपुर, आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, मुरार संतर से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा, चौरसिया कॉलोनी से, चौरसिया कॉलोनी ग्वालियर से कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, रेखा चौरसिया, और इस गीत को हमारे इन श्रोताओं ने भी सुनना चाहा है। चर डोगरी पिपरिया जिला के वीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति का ये गीत।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। इस गीत को गाया साधना सरगम, मोहम्मद अजीज़ और सुदेश भोसले और साथियों ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, कुंती साहू। राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और उनका पूरा परिवार। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चट्टा। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रोधी का ये गीत। इस गीत को युगल सुर में गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और इसके लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। साथ ही इस गीत को पसंद किया है मजनू काटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नेनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत उदित नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर की आवाज़ें थीं। गीतकार थे समीर, संगीतकार जतिन ललित। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी, ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से। माफ कीजिए, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदप, जूही इकबाल, आमना सामना, आमना आसमा परी, इकबाल अहमद फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले। गणेशपुर गुंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत। विपिन सचदेवा और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। सुल्तानपुर यूपी से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। इन श्रोताओं ने सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है, साथ ही इस गीत को पसंद किया है। जलाला वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से हमें फरमाइश भेजते हैं। आइए सुनते हैं।

सनम बेवफा फिल्म के इस फरमाइशी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित भी करेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। इस वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि को होगा। उज्जैन की जीवाजी राव वेदशाला के अनुसार ये पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में उस समय रात होने के कारण देखा नहीं जा सकेगा। भोपाल के बोट क्लब में आज से 16 अगस्त तक राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे और प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई बारिश के बाद अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।

ये बारिश गुनगुनाती थी छत की मंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के शीशों पर लिख जाती थी उंगलियों से संदेशे। दोस्तों, बारिश के बहाने जब रूह को भिगोती फुहारें और सीली सीली सी हवा भीगी भीगी सी घूमती है, तो किसका मन इसमें भीगने का ना हो। दोस्तों, हमने मौसमों को जीना छोड़ दिया है। बिना आंगन के घरों में किसी भी मौसम के आने जाने का अब कोई असर नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी में मौसम सिर्फ एक बटन बन के रह गया है। गर्मी लगी तो बटन ऑन करके पंखा या एसी चला दिया, ठंडी लगी तो हीटर। इस बार थोड़ा सा वक्त निकालकर इस बारिश के मौसम में भीगिए, थोड़ा खुश होइए, थोड़ा आनंदित होइए, महसूस कीजिए बारिश की इन बूंदों को, भीगी भीगी सी हवा को, सफ़ेद

0: भूरे काले बादलों को देखकर एहसास कीजिए। दोस्तों, ये जो बादल है ना, ये हजारों किलोमीटर दूर का सफर करके अमृत बरसाने आते हैं। तो इस अमृतमयी मौसम में, इस बारिश के मौसम में, इस बरसात के दिनों में, ये दिनों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आपके विचार जानना चाहेंगे, आपसे बातें करेंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर
0: जी।
1: जी अम्बेडकर चौक टेबर वार्ड खोरई से राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी।
1: जी
0: कैसे हैं जी?
1: बढ़िया सर, बढ़िया। बरसात हो रही है।
0: बहुत बढ़िया। जिस चीज की हमें जरूरत थी, जिस चीज के लिए हम तरस रहे थे, आखिरकार वो बात हो ही गई।
1: जी जी।
0: तो बताइए, इन दिनों क्या चल रहा है?
1: काम करते बिल्डिंग वर्क का। हाँ, तो काम भी अभी अच्छा चल रहा है।
0: अरे वाह वाह वाह। राम सखी जी, आज हमने जो विषय रखा है, बात आपकी गीत हमारे का, वो रखा है कि बरसात के दिनों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
1: बोलिए बोलिए
0: जी। हमारी आज की बातचीत का विषय हमने ये रखा है कि बरसात के दिनों में हम कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं वाहन चलाते वक्त, इसके अलावा हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, या हमारे खान पान से जुड़ी कोई भी ऐसी बात जो बारिश से संबंधित हो, उस विषय पर आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: जी, बरसात के दिनों में खान पान का तो ये है सर कि हरी सब्जियां भाजियां नहीं खाना चाहिए, उसमें इतने सूक्ष्म आपकी जीवाणु और बैक्टीरिया रहते हैं कि आपको नुकसान करते। तरब ताजा खाना खाएं, सादा खाना खाएं। दूसरी बात, वाहन चलाते समय बरसात में बहुत सावधानी रखें, कहीं गड्ढा आ गया है, पानी भरा तो वहां से निकाले। अच्छा, जहां से निकल रहा हो वहां अगर आपकी नदी नाली पड़ रहे हो, अगर उफान पे है नदी, तो बिल्कुल वाहन ना निकाले। और अच्छा, वृक्षों ऊपर अगर कर सके तो जल्दी से जल्दी करे, वो अच्छा वृक्षों ऊपर करे, उसकी देखभाल करे।
0: जी, तो इन सब बातों पर आप भी अमल करते हैं?
1: बिल्कुल अमल करते हैं सर, हम तो साइकिल शॉप है, साइकिल चलाते हैं।
0: आप अमल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार सर
0: जी।
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव बिलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, आपकी मेहरबानी ऊपर वाले।
0: वाह वाह वाह। चलिए, आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि हमारी आज की बातचीत का विषय हमने रखा है कि बरसात के दिनों में आप कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं।
1: बरसात के दिनों में ज्यादा गीले भी नहीं रहना चाहिए, सूखे कपड़े पहनना चाहिए
0: जी।
1: थोड़ी बरसात में नदी नालों का भी ध्यान रखना चाहिए।
0: नदी नालों से संबंधित कोई और सुझाव, कोई और विचार अगर आपके मन में हो तो वो भी बताएं।
1: नदी नाले तो सर अभी यहाँ हमारे यहाँ पानी की बहुत इंतजार कर रहे हैं सभी। हाँ, पानी तो यहाँ अभी छींटे आकर बरस जाते हैं और ज्यादा पानी नहीं गिर रहा है।
0: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पर भी खुशियों की बारिश हो। फिलहाल एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे।
2: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: नमस्कार
1: नमस्कार सर,
0: जी।
1: मैं सतना से बोल रही हूँ, मोलिना रॉय।
0: रीना जी कहाँ से बोल रहे
1: मोलिना
0: हैं?
1: मोलिना
0: मोलिना।
1: जी
0: अच्छा जी, ये आपका नाम है?
1: जी मेरा नाम है ही।
0: अच्छा जी, बड़ा अनोखा नाम
1: मेरे
0: है।
1: माता पिता ने रखा।
0: जी, नहीं, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। आज की बात का विषय हम आपको बता दें कि
1: जी
0: आज हम बात कर रहे हैं कि बारिश के दिनों में हम कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं, या बारिश से संबंधित कोई सलाह, कोई सुझाव आप हमारे श्रोताओं को अगर देना चाहें तो बताइए।
1: बारिश के दिनों में तो ये कि सावधानी बरतनी है, तो आप पहली बात घर से जब भी निकले, भले ही मौसम खुला लग रहा हो आपको और कब बारिश होगी ये तो किसी को पता नहीं है, अचानक होती है, तो छाता अपने साथ अवश्य रखें। फोन के लिए एक पन्नी रखें जो आप उसको सेफ रख सकते, जो आपके लाइफ के साथ बहुत जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ,
1: और हो सके तो बारिश के दिनों में खान पान का विशेष ध्यान रखें, जो इम्यूनिटी को नुकसान ना पहुंचाए आपके।
0: लेकिन बारिश के दिनों में खाने की इच्छाएं तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ तला
1: हाँ
0: भुना
1: सर, दाल
0: चटपटा।
1: पकौड़े
0: जी
1: तो है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के घर में बना के खाए, बाजार का खाए, लेकिन ध्यान दें कि बाहर थोड़ा साफ सफाई रहे, आप खाए जिससे बीमार ना पड़े आप।
0: जी आप कहीं से भी खाएं, इस बात का ध्यान रखें, आप घर में हो या बाहर हो, साफ
1: जी
0: सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत जरूरी
0: जी, और उतना ही खाएं जितना आप हजम कर सकें। चलिए,
1: जी
0: आपने एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते बहुत अच्छे सुझाव दिए। हम एक गीत आपको सुनवाना चाहेंगे।
1: बिल्कुल
0: सर
1: नमस्ते।

0: नमस्ते।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: बात आपकी गीत हमारे साथ।
0: जी हाँ, बात आपकी गीत हमारे में। आपका स्वागत
1: जी, सर
0: है।
1: नमस्कार।
0: जी
1: जी,
0: आप अपना परिचय दीजिए।
1: मैं अनूपपुर जिले से बोल रहा हूँ सर, नीरज उपाध्याय।
0: अनूपपुर से नीरज उपाध्याय जी बोल रहे हैं।
1: जी सर, ठीक
0: कैसे हैं जी?
1: है सर।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: इन्होंने सर, खेती बाड़ी चल रही है, रोपाई का कार्य चल रही है।
0: अच्छा।
1: जी
0: तो इन दिनों आपके यहाँ बारिश वगैरह के क्या हाल हैं?
1: बारिश तो सर अनूपपुर जिले में अभी कल से थमी है, लेकिन बारिश काफी तेज हुई है अभी बीच में।
0: अच्छा,
1: जी
0: मतलब
1: सर,
0: पानी को लेकर, बरसात को लेकर जो शिकायतें थीं वो अभी बनी हुई हैं या दूर हो चुकी हैं?
1: नहीं सर, हमारे अनूपपुर में तो दूर हो गई है सर,
0: अच्छा,
1: बारिश
0: चलिए,
1: काफी हुई
0: भरपूर
1: है इस
0: बारिश
1: हिसाब से
0: हुई है
1: अपने पे।
0: मतलब
1: जी
0: वहाँ पर।
1: जी
0: आज हम बात कर रहे हैं कि इसी बारिश के दौरान या
1: जी
0: किसी भी बारिश के दौरान आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतते हैं, कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जो आप
1: जी
0: चाहते हैं कि हमारे बाकी के सुनने वालों के भी वो काम आ सकते हों, तो बताइए।
1: जी सर, बिल्कुल बहुत सही विचार आपने आज का जो व्यक्त किया है, बहुत अच्छा है सर। बारिश के मौसम में तो सबसे पहले हमें, बारिश के मौसम में हमें जो जीव जंतु जहरीले निकलते हैं बरसात के मौसम में, उनसे हमें हमें दूरी बनाने रखना चाहिए हमेशा। मतलब आसपास साफ सफाई और टॉर्च का उपयोग रात में हमेशा करना चाहिए। जी सर, और बरसात के दिनों में जल भराव जहाँ पे ज्यादा हो जाता है वहाँ पास आस पास नहीं जाना चाहिए, नदी जैसे हो गए और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जी सर, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर ना जाएं सर।
0: जी हाँ, ऐसे हादसों की खबरें आए दिनों हम सुनते देखते पढ़ते रहते हैं, और
1: जी
0: जो बारिश से जुड़ी हुई हैं। हम
1: जी
0: आजकल सेल्फी के चक्कर में या फिर अपनी रील बनाने के चक्कर में ज़्यादा जोखिम उठाने लगते हैं, तो ये ऐसे जोखिम बड़े बड़े हादसों को न्योता देते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: इनसे
1: सर।
0: बचने का केवल एक ही उपाय है, सावधानी और सुरक्षा।
1: जी सर,
0: चलिए, नीरज उपाध्याय जी,
1: जी
0: आपने
1: सर, सा
0: जी
1: जी बताया, ये बोल रहा था साथ साथ की बताए हुए गाइडलाइंस को हमें पालन करना चाहिए।
0: जी
1: जी, कि बरसात के मौसम में ऐसे जगहों पर ना जाएं जहां पे खतरा बना हो।
0: हाँ, बारिश में तो ये
1: जी
0: सावधानियाँ रखनी ही चाहिए, और दीगर मौसमों में भी हम किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से पहले उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी ले लें कि वो जगह अगर पर्यटन स्थल है तो
1: जी
0: जहाँ उसमें सूचना भी दी जाती है वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि इस स्थिति में ये हादसा हो सकता है। वहाँ पर अगर गहराई है तो वहाँ बोर्ड लगे हुए रहते हैं कि यहाँ पर स्नान मना है या पानी में उतरना मना है, तो उन सारी बातों को भी हम ध्यान रखें।
1: जी सर, बिल्कुल
0: चलिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आपने फ़ोन किया, इसके लिए धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है?
1: नहीं, मेरा पहली बार कॉल लगा है।
0: हाँ हाँ, पहली बार आपका फ़ोन लगा है तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं।
1: जी मेरा नाम स्वाति है।
0: स्वाति जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: मेरे गांव का नाम वहला महाराष्ट्र है, तहसील खामगांव, जिला बुलढाणा।
0: बुलढाणा से बोल रही हैं?
1: गांव का नाम वहला महाराष्ट्र है।
0: अच्छा जी, क्या करती हैं?
1: जी मैं तो आंखों से ब्लाइंड हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: ओहो, चलिए, तो रेडियो आप सुनते रहते होंगे?
1: जी मैं तो बचपन से ही रेडियो सुनती हूँ।
0: तो स्वाति जी, बारिश के दिनों में ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हो सकती है जिन्हें आप बताना चाहती हैं?
1: बारिश के दिनों में खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी,
0: और इसके अलावा
1: पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए।
0: ये अच्छी बात आपने कही कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने का ख़तरा रहता है बारिश के दिनों में। अचानक
1: जी
0: पहाड़ वगैरह जो होते हैं वो भरभरा के गिर भी सकते हैं, तो ऐसे किसी भी स्थान पर जहाँ पर ना जाने की ताकीद की गई हो उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए।
1: जी
0: स्वाति जी, आपने फ़ोन किया, एक गीत हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: जी शिवम जी नमस्कार।
0: और कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं, और आपका परिचय जानकर हमारे बाकी के श्रोता भी बहुत खुश होंगे।
1: जी बिल्कुल, मैं ग्राम गौर जामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन जी, इन दिनों क्या चल रहा है?
1: इन दिनों तो सर बस यही है, बारिश हो रही है अभी, तो बस खेतों के ही काम चल रहे हैं सर हमारे यहाँ तो किसानों में।
0: अच्छा,
1: जी खरीफ की फसलें लगी हुई हैं,
0: जी
1: हालांकि बीच में 10-12 दिन तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अभी कल से परसों से थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो अच्छा है अभी तो।
0: हाँ, तो ये बारिश फसलों के लिए लाभप्रद होगी।
1: जी बिल्कुल, ये फसलों के लिए अच्छी बारिश है, और कल तो कहा जाए तो दिन भर बारिश हुई है, लेकिन ऐसी बारिश हुई कि खेतों से पानी भी नहीं निकला, मतलब जो खेत को चाहिए था वही। जी
0: तो आज की हमारी बातचीत का विषय भी यही है कि हम बारिश के दौरान ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, या उन बातों पर हम अमल करते हैं जिन बातों को हमारे दूसरे श्रोता भी अगर जाने तो वो उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है।
1: देखिए, बारिश के क्योंकि आपने विषय सिर्फ बारिश का रखा है, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में अगर व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग बातें हो सकती हैं, वो खान पान से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो खेती किसानी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो हमारे किसी सफर या किसी जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी सावधानियाँ हो सकती हैं, तो विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं,
0: जी
1: तो विषय काफी अच्छा है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि विषय अच्छा है और मौसम भी उचित है। जी तो मैं थोड़ी थोड़ी एक दो बातें बताना चाहूंगा,
0: बिल्कुल
1: बाकी सभी श्रोता तो बता ही रहे होंगे और अच्छी बातें श्रोताओं ने कही भी होंगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जैसे बारिश के मौसम में कहते हैं कि अपना जो खान पान का जो रू मतलब अपने ये क्या इच्छा होती है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, और वहीं डॉक्टर कहते हैं कि इस समय बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जी तो यहाँ पर एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है हमारे लिए कि खान पान हम अच्छा रखें, और जो हमारी तला भुंजा खाने की एक इच्छा बहुत ज्यादा कहते हैं कि बरसात में और सावन में ज्यादा विशिष्ट तौर पर कहा जाता है कि होती है, तो वो भी हम बनाए के रखें, लेकिन दूसरी तरफ ये संतुलन भी बना के रखें कि हम बीमार ना पड़े, इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया हमें ना पकड़ लें, कोई संक्रमण से हम बचे रहें, ये पहली चीज जरूरी है, क्योंकि पेट की समस्याएं भी इसी मौसम में ज्यादातर देखी जाती है कि पेट दर्द हो रहा है, या फिर दस्त वगैरह भी देखा जाता है बहुत सारे लोगों को कि बरसात आया तो ऐसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बरसात में ये समस्या हमें हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हमारी गलतियां कुछ ना कुछ कारण हो ही जाते होंगे तभी ऐसा होता है, तो इससे भी बचने की आवश्यकता है। दूसरा, मच्छर इस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, डेंगू के मलेरिया के आपकी चिकनगुनिया, तो ये बीमारियां भी मच्छर से ही फैलने वाली बीमारियां हैं, ये तीनों बीमारी जो मैंने बताई हैं, तो इससे भी हमें परहेज करना है और बच के रखना है। अब एक चीज ये भी है कि इसके लिए मतलब पानी जमा ना होने दें, हालांकि ये बातें बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम रील जो चल रही है आजकल, रील वगैरह बना रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो बारिश में बाढ़ों में इसके लिए भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो छोटे छोटे जो ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं उसमें अपनी पूरी सतर्कता बरतें, और कोशिश ये करें कि जो जगह भयानक है या फिर जहाँ पे खतरा है वहां पर जाए ना, बल्कि क्या होता है कि ये सेल्फी वहीं खींच के ले जाती है, तो उससे भी हमें बचने की आवश्यकता है।
0: चलिए, आपने बहुत सारे विषयों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता इन विषयों को भी सोचें, विचारें और अपने जीवन में उतारें, ताकि
1: जी
0: बारिश के दौरान
1: और चलते चलते एक
0: जी
1: बधाई मैं आपको देना चाहूंगा कि परसों के दिन 7:30 से 8:30 बजे से और 9:15 तक जो आपके साथ सफर गुजरा था काफी अच्छा लगा था मुझे।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम को सराहा। एक गीत
1: जी
0: हम आपको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी
0: नमस्कार।
1: शुक्रिया, नमस्कार।

0: जी नमस्ते। हाँ
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: किनसे हमारी बात हो
1: सिंह
0: रही है?
1: सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। प्रेम
0: एक बार नाम अपना फिर से बताइए। अच्छा
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: जी प्रेम सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, तो कुछ सुना सकते हैं अभी हमें तत्काल?
1: जी बिल्कुल, शिव जी की एक छोटी सी भजन की लाइन सुना दो आपको।
0: स्वागत है।
1: जी।

0: शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
1: आपने बहुत अच्छा भजन हमें सुनाया। अब हम मुद्दे की ओर मुड़ते हैं। हमारी आज की बात का विषय है कि बारिश के दिनों में कौन कौन सी सावधानियां आप रखते हैं और हमारे श्रोताओं को वो सुझाव देना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। बारिश का दौर शुरू हो चुका है और जगह जगह पर पानी भर जाता है। कहीं हम गाड़ियां लेकर भी जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि सड़क पर कितना गहरा गड्ढा है या ऐसे सीधे मतलब गड्ढे में गिर जाते हैं। सबसे पहले तो ऐसे जगह पे जाए जहाँ पर पानी भरा हुआ ना हो, और घर से निकलने के लिए छाता ले जाए, रेनकोट पहने, और ऐसे मतलब बताते हैं ना कि बारिश का दौर शुरू हो रहा है तो पहली बात तो यह है कि घर पे ही रहे। जी
1: चलिए।
0: जैसे कि आपको जाना भी है, जैसे हम खेत में काम करने भी ले जाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु भी निकल आते हैं, तो उनको भी मतलब ध्यान से देखिए और देखते हुए अपना काम करते रहिए।
1: चलिए, बहुत अच्छे विषय की ओर आपने ध्यान हमारा दिलाया है। हम चाहते हैं एक गीत हम आपको सुनवाएं। नमस्कार
0: जी, नमस्ते जी।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्ते श्रीमान जी। संजीव मेरा मेरा मेरा पहले अपना परिचय दे दूं।
0: जी हाँ जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में और आपसे जानते हैं आपका परिचय।
1: जी श्रीमान जी, ग्राम बापू छितीपुर, ग्राम पंचायत छितीपुर, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। श्रीमान जी, और मेरा नाम है श्रीनाम सिंह रजक।
0: अच्छा जी, श्री नाम जी।
1: श्रीनाम, SIR NAM, श्रीनाम सिंह रजक।
0: अरे वाह वाह वाह, श्री नाम सिंह
1: जी
0: रजक जी,
1: जी
0: छतीपुर से बोल रहे हैं आप।
1: छितीपुर से, श्रीमान। छितीपुर शिवपुरी जिले में आता है, छितीपुर करेरा तहसील में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी श्रीमान जी,
0: जी
1: दो लाइन बोलना।

0: रहता हूँ।
1: हम्म,
0: वृक्ष धरा के हैं आभूषण, वृक्ष धरा के हैं आभूषण, इनसे होता दूर प्रदूषण, वृक्ष लगाओ पुण्य कमाओ, वृक्ष काटना महापाप, भैया बच के रहना आप।
1: वाह वाह वाह, तो इस बारिश के दौरान आपने भी वृक्षारोपण किया है?
0: बिल्कुल श्रीमान जी, सर जी मैं पंचायत भवन में नौकरी करता हूँ, सर जी मैं वृक्षारोपण करवा रहा हूँ पंचायत में, करवाता हूँ हर साल।
1: तो केवल पेड़ों को लगाना ही पर्याप्त है या उनकी देखभाल करके
0: नहीं,
1: उन्हें एक वृक्ष बनाना भी जरूरी
0: है? जाली लगवाते हो, गुम्मा वाले घर बनवाते हो, पौधा लगवाते सर जी, हमारी पंचायत कम से ज्यादा नहीं सर जी 400-500 पेड़ हो गए सर जी जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ।
1: वाह वाह वाह, चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बारिश जो है ये पानी नहीं बरसाती, ये बारिश अमृत बरसाती है।
0: अपन की खुद गलती है, अगर अपन पेड़ नहीं लगाए तो एक दिन अपनी आने वाली पीढ़ी मतलब बहुत पीछे चली जाएगी श्रीमान जी।
1: जी जी जी, तो इस धरती को हमको, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को वैसे ही सौंपना है जैसे हमें मिली थी,
0: जैसे हमने देखा सर जी। और मतलब और अच्छा, इससे अच्छा कर सके तो और अच्छी बात,
1: और बेहतर बना के अगर हम इसे जा सकें तो ये सबसे बड़ा हमारा पुण्य का काम है।
0: जी श्रीमान जी, जी जी,
1: आपने अच्छी बातें की, हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। नमस्कार
0: जी श्रीमान जी, धन्यवाद सर, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई लेनदेन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद राज्य वन्य प्राणी की 32वीं बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, रंगोली और मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की है। भोपाल के बोट क्लब में आज से 16 अगस्त तक राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इसमें 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे और प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम, मन पसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आकांक्षा कि आप इतने भागदौड़ वाली जिंदगी में समय निकालकर हमें पत्र लिखते हैं अपने पसंद के गीतों सुनने के लिए। तो लीजिए, आज फिर शुरुआत करते हैं आपके पसंद के गीतों से, जिसे सुनने के लिए आपने फरमाइश भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। साथ ही दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने और शेरपुर कलां गाजीपुर से ही अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। और जो गीत आप सभी सुनना चाहते हैं उसके लिए एक और फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म स्वीकार किया मैंने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। लीजिए सुनिए।

राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, शाजापुर, मध्य प्रदेश से MM राजावत, राज मधु राशि, रक्षित चितरंजन, कमलेश उमेश, सरोज आरती, रेखा रितिका, स्वीटी सागर, रिचा रिया रीत और ऋषभ राजावत, गोला बाजार बक्सर से जीवत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष कुमार, आयुषी और सानवी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म नूरी का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत जानिसार अख्तर का है और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

राह ही बदल गए। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दादा इस फिल्म का गीत सुनिए यशुदास की आवाज में। बोल कुलवंत जानी के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से दत्त के दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म इजाजत का गीत आशा भोसले की आवाज में। गीत गुलजार का है, संगीत है आरडी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया की, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की पहली कड़ी।

अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी, भारत की तरुणाई की वो ऐसी अंगड़ाई जिसने स्वतंत्रता के पहले संग्राम का इतिहास कोटि सूर्यों की प्रभा से आलोकित किया, जो शीर्षक थी शौर्य की, संकल्प की, उत्सर्ग की, जिसकी स्मृति अब भी उद्वेलित करती है शिरा शिरा में ऊर्ज्वसित ओज की नित्य तरंगणी, सतत प्रवाहित आत्मविश्वास की उन्मुक्त धारा, एक धरोहर, एक विरासत।

0: भारतीय इतिहास की 19वीं शताब्दी और इस सदी का सन 1857।
1: जब समय की राहों पर दूर दूर तक शौर्य बलिदान और आत्मोत्सर्ग के उजाले फैलते गए, संक्रमण की धुरी पर नियति के चक्र घूमने लगे, पीढ़ियां उठ खड़ी हुई और दमकते हुए कालक्षण अमर और स्मरणीय आख्यान का व्याख्यान बन गए।

0: पहले स्वाधीनता संग्राम में यश और कीर्ति के संवाहक दो साहसिक घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। नीम के पत्थरों की तरह जो बिछा हुआ है और उस पर टिका हुआ है भव्य भारत का ये आधुनिक प्रासाद अपने कलशों कंकुरों के साथ। वो महासंग्राम जैसी चिंगारी थी जो देखते ही देखते जन दावानल में बदल गई। ओर से छोर तक समूचे दृश्य पटल को जिसने समेट लिया।
1: आग की आकाश चुमती लपटों का एक ठिकाना थी झांसी। लेकिन झांसी ही क्यों, मेरठ, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, कहां कहां नहीं थी क्रांति की ये अंगड़ाई। पूरा का पूरा देश और उसका जीवित जागृत जनगण, किसान, दस्तकार, सामंत, सूबेदार और सिपाही मुक्ति के इस पावन संकल्प के साझीदार, हिस्सेदार थे। लोहू और लोहे से एक प्रस्तावना लिखने में जुट गए थे।
0: ये अचानक नहीं हुआ, इतिहास में अकारण या संदर्भों से कटकर अकस्मात कुछ भी घटित नहीं हुआ करता। इतिहास में कार्यों के साथ कारणों की एक नियोजित श्रृंखला होती है। हर एक घटना का पूर्वा पर संबंध, वो कारण बीज जो वर्तमान के धरातल पर पीछे से पहुंचकर अंकुरित और पल्लवित होता है और एक कालखंड बन जाता है। कभी जो ललकारता है तो कभी वो पराभूत भी कर देता है। अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए जनगण कभी इसे नियति मानकर समर्पण भी कर देते हैं।
2: लेकिन जीवन और जागृत संकल्प कभी समर्पण की इस असहायता को स्वीकार नहीं कर पाते। जनगणों का हौसला कभी पस्त नहीं होता। उन्हें संक्रांति के समय की नैसर्गिक पहचान होती है। अवसर आते ही वह आलस्य और निरीता को त्याग कर परिवर्तन के अनुष्ठान में उठ खड़े होते हैं।
1: 1857 की लोक क्रांति एक ऐसा ही धन्य समय था, जनता के जागरण का समय, जनगण का चुनौतियों का मुकाबला करने वाली तत्परता और प्रस्तुति का अभूतपूर्व अध्याय।
0: अज्ञात शताब्दियों से महादेश भारत

सुदूर देशों के प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, सभ्यता और संस्कृतियों का एक चौराहा, जहां लोग आते गए और एक दूसरे से मिलते गए, प्रश्रय देने वाला एक पालना आगंतुकों के लिए, जिसकी आत्मीयता और स्नेह सदैव ही मुक्त और प्रचुर बना रहा, जिसने हर परदेशी को अपनाया और गले लगाया का एक चौराहा, जहां लोग आते गए और एक दूसरे से मिलते गए, प्रश्रय देने वाला एक पालना आगंतुकों के लिए, जिसकी आत्मीयता और स्नेह सदैव ही मुक्त और प्रचुर बना रहा, जिसने हर परदेशी को अपनाया और गले लगाया।

का एक चौराहा जहां लोग आते गए और एक दूसरे से मिलते गए। प्रश्रय देने वाला एक पालना आगंतुकों के लिए जिसकी आत्मीयता और स्नेह सदैव ही मुक्त और प्रचुर बना रहा, जिसने हर परदेशी को अपनाया और गले लगाया।

0: भारत ने कभी भी सब्र के साथ आने वाले तूफानों के आगे सिर नहीं झुकाया, हमेशा उसका मुकाबला किया, कभी कामयाबी के साथ और कभी नाकाम होकर। और जब वो नाकाम भी रहा तो उसने अपनी नाकामयाबी को याद रखा है और अगली कोशिश के लिए अपने आप को तैयार किया है।
1: विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध 1857 में भारतीय जनगण की अंगड़ाई एक ऐसी कोशिश थी जिसने स्वाधीनता के गौरवशाली महासंग्राम की भूमिका तैयार की और अंततः अगली सदी में सफलता प्राप्त की।
2: भारत के इतिहास के ये संघर्षों से समुज्ज्वलित पृष्ठ रोचक हैं, जो भारत की जनता की अदम्य जिजीविषा की गवाही देते हैं। एक उपक्रम इन पृष्ठों में समाया हुआ है, भारत की स्वाधीनता का लोलुप विदेशियों द्वारा अपहरण, जनगण का संकल्पित संघर्ष और उसके मजबूत इरादों के द्वारा फिर से स्वाधीनता का वर्ण, एक आभ्यंतर नाटक और उसका पटाक्षेप।
0: हिंदुस्तान की कहानी में इसी जिजीविषा को शब्द देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये कोई गुप्त सिद्धांत या गूढ़ विद्या नहीं है जिसने हिंदुस्तान को इतने लंबे युगों तक जिंदा और कायम रखा। जिस चीज ने ऐसा किया है वो है उसकी कोमल मानवता, उसकी बहुरंगी और रवादारी बरतने वाली संस्कृति और जिंदगी, और उसके भेद भरे तरीकों की गहरी सूझबूझ, उसकी भरी पूरी जीवनी शक्ति की धार।
1: जीवनी शक्ति के संकेत के रूप में भारत विदेशियों के लिए एक आकर्षण की भूमि था, किस्से कहानियों कल्पनाओं का एक रूमानी देश, जिसके दस्तकारों कारीगरों का हुनर धरती के पड़ावों को लांघकर देश देशों के बाजारों तक पहुंचता था और सुदूर निवासियों को चमत्कृत करता था। उनकी इच्छाएं उद्वेलित हो जाती थीं। विस्मय से वह सोचते थे कैसा होगा वह देश।
2: सदियों सदियों तक भारत भूमि का यश और हमारे दस्तकार कारीगरों का कौशल दुनिया के बाजारों में गूंज रहा था, ऐसी कथा कल्पनाएं बनकर जो सोने की चिड़िया का सम्मोहन थी। धन धान्य भरपूर भंडार, स्वर्ण का वैभव का परम धाम, स्वर्ग कहीं था तो बस यही था, यही था। दौड़ पड़े परदेसी लोलुपता से ललचाए इस महादेश की माटी को पंकिल करने।
0: जब एशिया मूर्छित और अपनी पुरानी कोशिशों की वजह से थक गया था,

0: आत्मसम्मोहन की शलथता उसे घेर चुकी थी। तब पिछड़े हुए यूरोप में तब्दीलियों के आसार दिखाई दिए।
1: उस जमाने में भारत में ये परिवर्तन नहीं हुए। भारत और यूं कहें एशिया भर की रचनात्मक स्फूर्ति और आविष्कार खोजों की शक्ति जैसे अपंग हो गई थी, एक ठहराव आ गया था।
2: यूरोप में गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस के दौर में कपड़ा बुनने की उड़ती हुई तकली, घड़ी को चलाने वाले पेंडुलम, छापे खाने और भाप के इंजन बन रहे थे जो औद्योगिकरण का आधार बने। हाथों की जगह मशीनें आईं, उत्पादन बहुत बढ़ गया। बढ़े हुए उत्पादन के लिए ज्यादा कच्चे माल की जरूरत थी और जरूरत से ज्यादा तैयार माल की खपत के लिए बाजार की।
1: ये यूरोप का दृश्य पटल था। विपरीत इसके भारत के लोग हवाई बातों की बुरी लत में पड़े हुए थे। अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा, कामकाज के पुराने तौर तरीके, महाजन और सामंती शोषण से करहाती जनता, दुर्भाग्य का ग्रहण महादेश के सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह नए और पुराने के टकराव का नेपथ्य था।
0: औद्योगिक क्रांति की स्फूर्ति और जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के नाविक समुद्री रास्तों से यहां वहां दौड़ पड़े। उनकी तलाश थी वो सोने की चिड़िया जिसे उन्होंने अफसानों में देखा था।
2: वास्को डी गामा भारत पहुंचा और उसने पश्चिमी तट पर गोवा में पुर्तगालियों की बस्ती बनाई। इस सिलसिले में आने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। उनकी अपनी दावेदारियां थीं, अपने अपने इरादे और व्यापारिक स्वार्थ थे। अलग अलग कंपनियां, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे इंग्लैंड ने भारत में व्यापार करने की सनद दी थी। व्यापार और तलवार का ये खेल साम्राज्यवाद का आधार बना। 18वीं और 19वीं सदी के इतिहास को इस

0: ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में थॉमस रो को जहांगीर के दरबार से व्यापारिक कोठियां बंगाल और दक्षिण भारत में स्थापित करने की इजाजती सनद मिली थी और 100-125 साल बाद प्लासी की लड़ाई के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को पुख्ता कर दिया।
1: इस छोटे से कालखंड में अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को परास्त ही नहीं किया, अब वह भारत को हड़पने के इकलौते दावेदार थे। भारत के समुद्री किनारों से उठा विनाश का ये बवंडर पसरता चला गया। फिरंगियों को अपने पांव जमाने के लिए कई जगहें और दुर्लभ संधियों षड्यंत्रों के कई बहाने मिलते गए। वो काली आंधी की तरह फैलते गए।

0: अब अंग्रेज एक आवश्यक उपस्थिति बन चुके थे, हर कहीं हर जगह। क्रूर षड्यंत्रकारी सब कुछ निगलने हड़पने के लिए जीभ लपलपाते हुए आश्रय देने वाले देश को नेस्तनाबूद करने पर आमादा, जिनकी नीति और कारगुजारी थी आपस में लड़वाना और जनता को कमजोर करके बंदर बांट करना, सत्ता को हड़पना और प्रभुत्व तथा सर्वोपरिता हासिल करना।
1: और हिंदुस्तान के हालात इस लायक थे, महान मुगलों की ताकत औरंगजेब के बाद से क्षीण हो चली थी। आपसी मारकाट, छीना झपटी और उत्तराधिकार के लिए शहजादों की कलह से दिल्ली का विगत वैभव अस्ताचल की ओर अग्रसर था। दिल्ली की बादशाहत, दिल्ली के शासक की शक्ति और धाक, रुतबा और मर्तबा जैसे गुजरी हुई कहानी बन चुके थे। देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बिखर गया था जो निरंकुश और स्वच्छंद थे।
2: बादशाहत एक खोखला प्रतीक थी, एक ऐसा भ्रम जिसकी परछाई तक उसके आसपास नहीं थी।
0: और दूसरे शासक थे, पूरब में बंगाल का नवाब, दक्षिण में हैदर अली और पेशवाई के सरदार सूबेदार, जो यहां वहां खुद मुख्तार रियासतें बना चुके थे। उत्तर पश्चिम में सिख, अवध में फिर नवाब। इस कमजोर ढांचे का ताना बाना बिखरा हुआ था, लक्ष्य की एकाग्रता उनके पास नहीं थी।
1: कंपनी व्यापारियों की जमात थी, उसने भारी मुनाफा कमाया और इस मुनाफे की कीमत जनता को चुकानी पड़ी। डलहौजी ने विदा होते समय कहा था, कंपनी को 40 लाख पौंड का लाभ मिला है और इंग्लैंड जाने वाले जहाजों का वजन दुगना हो गया है, लेकिन बस व्यापार ही नहीं, वो तो लंबे फायदे का सौदा कर रहे हैं। इसी देश की दौलत से उन्होंने फौजें खड़ी कर दी, मुट्ठी भर हुकाम और हजारों देशी सिपाही जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, जी जान लगाकर, सिर पर कफन और परंपराओं का केसरिया बाना पहनकर, ये भूल कर कि वो किस

0: कंपनी की साजिशों, संधियों और युद्धों के सिलसिले में एक के बाद एक राज्य प्रदेश डूबता चला गया।
1: पलासी की लड़ाई इस सिलसिले की पहली कड़ी थी, जिसे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सोपान माना गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सहयोगी फ्रांसीसियों को हराकर कंपनी ने पहले बंगाल पर अपना कब्जा किया और यहां से आगे बढ़कर उड़ीसा को हत्या लिया।
2: 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में मैसूर की पराजय और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर राज्य अधीनस्थ हुआ।
1: सिंध पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। पहले अफगान युद्ध में अंग्रेज सेनाएं गुजरी थीं, इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और सिंध के सामंतों को धमकी दी कि वह अधीनता स्वीकार करें। इसके बाद सिंध को राज में मिला लिया गया।
2: पंजाब में सिखों के खिलाफ अभियान छेड़कर स्थानीय देशद्रोहियों की मदद से ब्रिटिश सेनाओं ने आजादी छीन ली। सिख मूल रूप से किसान थे और मजहबी दीवारों के खिलाफ प्रेम और भाईचारे का आंदोलन चला रहे थे। सिखों की पराजय से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब तरफ उपनिवेशवाद पसर गया।

0: भारतीय राज्यों को उपनिवेश बनाने का कंपनी का एक तरीका था। पहले वो राजाओं नवाबों से सहयोग और सहायता के समझौते करके उनके इलाकों में कंपनी की फौजें भेज देते थे, जिनका खर्च हिंदुस्तानी सामंत को उठाना पड़ता था। वो कंपनी के कर्ज में डूबता चला जाता था और आखिर में इस बहाने से अंग्रेज उसकी अलमदारी को राज में मिला लेते थे।
1: अवध में यही हुआ। पहले संधि के बाद कंपनी की फौज आई। इस फौज का खर्च उठाने के लिए नवाब ने अंग्रेजों की सलाह से रियाया पर नए कर लगाए। जनता में इससे असंतोष फैला, विरोध हुआ। अंग्रेजों को बहाना मिला कि नवाब शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है, बल्कि विद्रोहियों की सहायता और समर्थन कर रहा है।
2: नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कोलकाता भेज दिया गया। की भूमि की मिल्कियत के अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस अधिकार का उपयोग वो जिस प्रकार चाहेगी उस प्रकार करेगी।
0: इस तरह भारत का स्वतंत्र सूर्य धीरे धीरे डूबता जा रहा था और पराधीनता की कालिक धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। लेकिन स्वाभिमानी देश की तरुणाई इससे बेखबर नहीं थी। पराधीनता का दंश स्फीत रुधिर में तीखा होकर कसक रहा था। एक चिंगारी थी जो बेचैन होकर आकार ले रही थी। कंपनी की फौज के सिपाहियों में, देश के किसानों में, स्थिति की असहायता से उबे हुए सामंतों में, अधिकार खो चुके रजवाड़ों में क्रांति की प्रस्तावना लिखी जा चुकी थी।
1: अंग्रेजी विस्तार की एक विंध्याचली बाधा थे मराठे। मुगल साम्राज्य के पराभव काल में ये जाबाज मराठे समूचे उत्तर भारत तक फैल गए थे। मराठों की शक्ति का सामना अंग्रेजों से हुआ। मराठा सूबेदारों की रियासतें यहाँ वहाँ थीं। ग्वालियर, झांसी, इंदौर और बड़ौदा, इन रियासतों की अपनी अपनी सैन्य शक्ति थी। पूना पेशवा इन मराठों का सर्वोपरि पंत प्रधान था। शुरू में हुए आमने सामनों में मराठों ने अंग्रेजों को खूब छकाया,
2: लेकिन मराठे कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेजों का छल कपट भारी पड़ा। सूबेदारों की प्रतिस्पर्धा, आपसी जलन, ईर्ष्या, विद्वेष ने उन्हें हरा दिया। वो इतिहास के दुर्लभ क्षणों की चुनौती एकजुट होकर झेल नहीं पाए
1: और कंपनी ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। संधि में पेशवा को विठूर की स्वतंत्र जागीर अता फरमाई गई और राजसी खर्चों के लिए वार्षिक 8 लाख रुपयों की पेंशन मंजूर की गई।
2: पेशवाई इतिहास से विदा हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने दरबार, लाल लश्कर, मुसाहिबों, स्त्रियों समेत पूना से विठूर के लिए रवाना कर दिए गए।
0: पेशवा के साथ आए परिवारों में से एक मोरोपंत तांबे का परिवार था। इस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। वो ऐतिहासिक तारीख थी 19 नवंबर सन 1836 और इस कन्या का नाम था मनु।
3: मुलगी झाली, मुलगी।
4: अरे वाह, मुलगी झाली का?
3: लड़की हुई है, लड़की हुई है ना।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपीआई लेन देन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण करेंगे। वहीं भोपाल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वीसी के माध्यम से वे शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इस दौरान वस्त्र, ऊर्जा, अधोसंरचना, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित भी करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से महाविद्यालयों में संस्कृत विषय शुरू करने के लिए विदिशा जिले से एक और शाजापुर जिले से दो महाविद्यालय का चयन किया है। भोपाल के बोट क्लब में आज से 16 अगस्त तक राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रोलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इनमें 12 राज्यों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलर्स हिस्सा लेंगे। और प्रदेश में लंबे समय से कम बारिश के बाद अब मॉनसून सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आप सभी को प्रीति जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। यदि उन्हें सही शिक्षा, कौशल, अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वे नवाचार, विज्ञान, तकनीक, उद्यमिता, खेल, कला और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कल हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले हैं और इसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है आज के युवा ही कल के राष्ट्र निर्माता हैं। ये तो बात हुई युवाओं की, अब बात करें धरती के अमृत की। जी हाँ, जल। जल है तो कल है। सखियों, जल हमारे भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और भूजल के लगातार घटते स्तर ने जल संरक्षण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। ऐसे में सरकार के साथ साथ हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है कि वे जल संरक्षण की जिम्मेदारी को समझें और अपने स्तर पर योगदान दें। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों और कुओं का संरक्षण, नदियों की स्वच्छता, जल का विवेकपूर्ण उपयोग और वृक्षारोपण जैसे छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए संकल्प लें कि पानी की हर बूंद बचाएंगे, जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे और जन भागीदारी से जल संपन्न भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। सखियों, योजना केवल एक आवास निर्माण योजना नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। यह योजना हर परिवार के पास अपना घर के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पात्रता की बात करें तो सखियों, आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय संबंधी जानकारी, बैंक खाता और निवास संबंधी दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदक के नाम पर सामान्यतः देश में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इस योजना के बहुत से लाभ हैं सखियों: महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं में विस्तार करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो सखियों, यदि आप भी अपना घर बनाने का सपना देख रही हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूर उठाएं। और अब भरते हैं हौसलों की उड़ान,
1: उड़ान खुशियों की,
2: उड़ान सपनों की,
1: उड़ान हौसलों की,
2: मेरी उड़ान
0: श्रृंखला मेरी उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है सखियों आपका। आज हमारे साथ है रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में

0: सफलता अर्जित की हुई सफलतम अभिनेत्री श्रीमती कनुप्रिया शंकर पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कनुप्रिया जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
0: कनुप्रिया जी, हमारी जो सखियां कार्यक्रम सुन रही हैं वो यकीनन आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो देखती हैं और बहुत बड़ी फैन भी रही होंगी। हमारी सखियां जानना चाहेंगी कि आप अभिनय क्षेत्र में किस तरह से दाखिल हुई और कैसे आपका रुझान इस ओर बढ़ा।
1: तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं उन सौभाग्यशाली लड़कियों में से हूँ जिसके माता पिता ने बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ संगीत, नृत्य और अन्य ललित कला जैसे थिएटर, ड्रामा, रेडियो नाटक, मंच पर नाटक और हर भाषा में, मैथिली में भी मैंने बहुत नाटक किए हैं, हिंदी में नाटक किए हैं, अंग्रेजी में नाटक किए हैं। तो मेरा इस तरह का एक्सपोजर हुआ कि स्कूल के साथ साथ हम बाहर भी मंच पर, पटना में जहाँ की मैं हूँ बिहार की, वहां पर नाटक करती रही। तो मेरा पहला नाटक ही था 6 साल की उम्र में। वैसे तो थिएटर है, म्यूजिक है, आर्ट है, ये एक व्यक्तित्व को गढ़ने में बहुत काम देता है, लेकिन मेरे लिए ये एक प्रोफेशन का हिस्सा भी है क्योंकि मैंने इसे अपना प्रोफेशन बनाया। मैंने तो ट्रेनिंग भी हासिल की थिएटर की और साथ में प्रोफेशनल नाटक भी किए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कनुप्रिया जी। अगर हमारी कोई सखी अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है तो आप उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी?
1: देखिए, अभिनय कुछ ऐसा है कि आप किसी भी उम्र में, लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी भी उम्र में आ जाएंगी, और मैं ऐसे कई महिलाओं से मिलती हूँ जिनके बच्चों की शादी हो गई है, विदेश चले गए हैं, लेकिन वो अब कुछ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं, फिर वो टेलीविजन करने लगती हैं, कुछ फिल्में भी करने लगती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं। अभिनय का ये मतलब तो कि आप सिर्फ टेलीविजन और फिल्म करें, अभिनय का ये मतलब है कि आप मंच पे भी काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्त्री वाकई एक अभिनेत्री बनना चाहती है या रंगमंच में करना चाहती है तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले, तभी वो अपने आप को जब सीरियसली लेगी तो आगे जो व्यक्ति बैठे हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, आपको जो कास्ट करने वाले हैं, वो भी आपको सीरियसली लेंगे, नहीं तो आपको भी बिल्कुल कैजुअली लिया जाएगा। वैसे अभिनय करने के लिए अगर ट्रेनिंग ले लेंगे तो लोगों के सामने आप एक क्रेडिबल, एक सच्चे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक प्रोफेशनल नजर आएंगे और आपको डेफिनेटली बेहतर काम मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, फिर सोचना चाहिए ग्लैमर के विषय में, क्योंकि इस काम में ग्लैमर बिल्कुल नहीं है, यही है, मेहनत ही ज्यादा है।
0: तो आपने किस तरह का कोर्स करा था इस क्षेत्र में आने के लिए?
1: तो चूंकि बचपन से थिएटर करती रही मैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ी रही, जहां एक डिप्लोमा कोर्स था, उसके बाद एमए के साथ साथ मैंने किया था वो, उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई जो कि मतलब मूर्धन्य इंस्टीट्यूट है, भारत ही नहीं एशिया का एक बिरला इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहां जरूर गई, 3 साल का कोर्स था पोस्ट ग्रेजुएशन, चूंकि मेरा एक ऑलरेडी थिएटर का बैकग्राउंड था तो वो प्लस थोड़ा समय करना, प्लस चूंकि मेरे पति भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं तो उनसे भी बहुत चर्चा होती थी, नेचुरल कोर्स था कि मुझे क्या काम करना है, तो मैं शायद जो काम आता है वही कर रही हूँ।
0: अभी तक आपने कितने सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है?
1: सीरियल्स मैंने 8-10 अच्छे सीरियल्स में काम किए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कसौटी जिंदगी की, ऐसे सीरियल्स। फिल्में भी कुछ की हैं मैंने, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जरा हटके जरा बचके, मिलन टॉकीज वगैरह। तो दर्शक देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं, मैं वहां करना चाहती हूँ।
0: अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आर्थिक उपार्जन की बात करें तो आप संतुष्ट हैं अपने काम से?
1: हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जैसे एक प्रोफेसर और एक लॉयर और एक डॉक्टर कमाता है, वैसे ही एक एक्टर अगर लगा रहे शिद्दत से तो वो कमाता है और बहुत निरंतर कमाता है।
0: कनुप्रिया जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है, तो कुछ गीत हमारी सखियों को आप गाकर सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: गीत तो अगर मैं गाऊं, चूंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं, तो बेहतर है कि मैं कुछ अपने नाटक का ही कुछ 2 लाइन गुनगुनाती हूं। तो ये कुछ ऐसा है कि कविताएं लिखी हुई हैं लेकिन उसको कंपोज किया गया है गीत में, तो हालांकि है ये ऐसा लगेगा कि शब्द तो, अरे ये तो ऐसा लग रहा है बातचीत है, लेकिन उसको कंपोज कर दिया गया, तो मुझे ये बहुत पसंद है। फिर उसके मन में ये आया, अपने भाई के घर जाए तो वो अपनी बाहें फैलाकर मुझको गले लगाएगा, पूछेगा कहाँ रही तुम मेरी बहना, कब से तेरी बाट निहारूं, वो देखो तेरी भावज है, वो है शादी में पाया जो खेतों का चक और साथ में 11 घोड़े 32 गायें। कुछ इस तरह का है कि है शब्द लेकिन गीत में।
0: कनुप्रिया जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति।

सखियों, सावन का महीना चल रहा है, कई सारे त्योहारों का आनंद भी हम ले रहे हैं, तो सुंदर दिखना भी लाजमी है। सखियों, ऐसे में हमारे खान पान में ऐसी कई चीजें शामिल हैं जिसमें खूबसूरती और स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है। दही भी एक ऐसा ही खजाना है जिसका उपयोग हर तरह से फायदेमंद है। तो आज रूप लावण्य में बात करेंगे दही से अपना सौंदर्य हम किस तरह से निखार सकते हैं। सखियों, दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड और मलाई यानी चिकनाहट होती है, ये दोनों ही त्वचा को निखार कर मुलायम बनाने का कार्य करती है और त्वचा को गोरा बनाती है। दही में बेसन मिलाकर उपटन की तरह लगाने से त्वचा के रोम छिद्र अच्छी तरह से साफ होते हैं। चौकर के साथ दही मिलाकर लगाने से ब्लैक हेड्स कम होते हैं। दही में शक्कर मिलाकर बालों पर लगाने से यह कंडीशनर का काम करता है। मुल्तानी मिट्टी के साथ दही अच्छे से क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। दही त्वचा के लिए एक वरदान है। चेहरे पर दही लगाकर 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरे की झाइयां कम होती है और चेहरे पर चमक और रंग भी साफ होता है। दही में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सिर धोने से रूसी दूर होती है सखियों, और बाल साफ मुलायम और काले होते हैं। ऐसे ही गर्दन के पिछले भाग पर कई बार कालीमा सी छा जाती है। इसे हटाने के लिए प्रतिदिन नहाते समय खट्टे दही से मालिश करें, कालापन दूर हो जाएगा। चेहरे के मुहासे दाने को दूर करने के लिए खट्टे दही का लेप चेहरे पर करें, सूखने पर धो लें, चेहरा चमक उठेगा और मुहासे दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप दही का उपयोग करें और अपना रूप निखार लें।

सखियों, रिमझिम बारिश हो तो कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने का मन तो करता ही है। आज फूड जोन में हम आपको बता रहे हैं सूजी स्टीम बॉल बनाने की आसान सी रेसिपी। तो सामग्री नोट करें सखियों, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, तेल आधा छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, अजवाइन, राई, मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग चुटकी भर, तिल 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, कड़ी पत्ते 5 से 6 और हरी मिर्च 1 कटी हुई। और विधि बहुत ही आसान है सखियों। एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें नमक और तेल मिलाएं। एक उबाल आने पर चम्मच से चलाते हुए सूजी मिलाएं। लगातार चम्मच से चलाते रहें। जब सूजी गुथे हुए आटे जैसी हो जाए तो आंच को उतार कर ठंडा होने दें। अब हाथों में चिकनाई लगाकर मिश्रण को मलें और छोटी छोटी बॉल बनाएं। गहरे बर्तन में रखकर इन बॉल्स को भाप में 10 से 12 मिनट मध्यम आंच पर पकाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करके राई और तिल तड़काएं, हरी मिर्च कड़ी पत्ता डालें, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डालकर इसमें स्टीम बॉल्स को डालकर अच्छे से मिलाकर ऊपर से हींग व नींबू रस डालें। अब बॉल्स को कुरकुरा करें, 1-2 मिनट ढककर रखें। अब गर्मा गर्म बॉल्स पर हरा धनिया डालकर परोसें और सावन के महीने का आनंद लें। सखियों, काम की कुछ बातों में आज बात करेंगे वॉशिंग मशीन की। सखियों, आजकल समय अभाव के कारण हर काम के लिए हम कोई ना कोई उपकरण का उपयोग करते ही हैं। चाहे खाना बनाना हो या फिर कपड़े ही क्यों ना धोना हो, आजकल तरह तरह के डिजिटल उपकरण मौजूद हैं हमारी सहायता के लिए, पर इनके उपयोग में जरा सी लापरवाही हमें बड़ा नुकसान भी पहुंचा देती है। यदि कपड़े धोने की ही बात करें तो वॉशिंग मशीन का उपयोग करते समय हमें कुछ न कुछ सावधानियां तो रखना ही चाहिए। मशीन में कपड़े डालते समय पहले बड़े कपड़े और फिर छोटे कपड़े डालें, हमेशा तह खोलकर डालें, नहीं तो कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे। बहुत ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग भी न करें, कपड़ों के हिसाब से पानी और डिटर्जेंट डालें। कोई भी नया कपड़ा जिसका रंग निकलता है उसे ना डालें, नहीं तो सारे कपड़ों पर रंग लग जाएगा। जिप या चेन वाले कपड़ों की जिप बंद करके ही दूसरे कपड़ों के साथ डालें, अन्यथा इनकी जिप से दूसरे कपड़े फट भी सकते हैं। अक्सर बटन और हुक्स को खोले बिना ही कपड़े मशीन में डाल देते हैं, इससे कपड़े खींचते हैं और बटन टूट भी जाते हैं, इसलिए बटन खोलकर ही मशीन में कपड़े डालें। हमेशा ध्यान रखें सखियों कि चलती वॉशिंग मशीन में कपड़े ना डालें, ना निकालें, ना स्विच को गीले हाथों से छुएं, आपको करंट लग सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अब सुने ये प्यारा सा गीत।

0: है बोलो।
1: ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झूमे सैया।
2: सखियों अब घड़ी इशारा कर रही है कि आपसे अनुमति ली जाए, तो आपको बता दें इस प्यारे से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब प्रीति जोशी को दे अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का,

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज कलाकार हैं नारियन खेताजी और भरोला कुमावत, इनके गाए लोकगीत आज आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नारायण खेता जी और भरोला कुमावत के गाय लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे राधा कुलकर्णी के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की।

राधा कुलकर्णी की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सर फिल्म का ये गीत है

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में कुमार शानू का गाया फिल्म सर का ये गीत था। चांदनी फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे ने गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, शिवहरी का संगीत है।

0: सुरेश वाडकर के गायब फिल्म चांदनी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच फोर लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। वहीं सीहोर के इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क आवंटित करने का फैसला लिया गया है। अन्य फैसलों को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि
2: देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विशेष रूप से इस बात को बताया कि जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस का संदेश का सीधा प्रसारण होगा। दो तरह से होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके संदेश का वाचन होता ही है, साथ ही जिला स्तर पर उस जिले की उपलब्धियां जो है, पिछले दिनों हुए विकास के काम है, वो भी जिले में लोगों को पता चले किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ी है, सोशल वेलफेयर की स्कीम से किस तरह सरकार आगे गई है, उस सब के भी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
1: कैबिनेट ने रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। डॉ. यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कामों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर भी राज्यपाल से चर्चा की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर जानकारी का आदान प्रदान हुआ। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। सरकार के मुताबिक किसान आईडी से किसानों को कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और ऋण वितरण जैसी योजनाओं को जोड़ने में मदद मिल रही है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी होंगी। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योग जगत को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की मंजूरी दी है। ये सुविधा विदिशा जिले के बासौदा, शाजापुर जिले के शुजालपुर और आगरमालवा जिले के सोयत कलां के शासकीय महाविद्यालयों में मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने नजदीकी कॉलेज में संस्कृत पढ़ने का अवसर मिलेगा। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हैं। बात करेंगे खेल की। भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में 12 राज्यों और अलग अलग क्लबों के करीब 100 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ी सेलिंग में अपने रफ्तार, संतुलन और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगरमालवा जिले के ग्रामीण अंचलों में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी और शिवपुरी जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। जिले के विभिन्न इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
3: Thank you.
0: दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
4: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल BSC की मीटिंग में भी आग्रह किया, फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल BSC की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
3: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल BJD के डॉ. संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
5: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
3: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
6: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
3: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
7: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
3: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
8: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18 दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
9: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य जीआई उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और अनलीनों के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
10: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
11: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले तीन दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, फरमाइशकर्ताओं के नाम बताएंगे हम इस गीत के बाद। गीत है फिल्म मिलन से, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी का गीत, लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म मिलन का ये गीत था, सुनना पसंद किया था। इस गीत के लिए और अगले गीत के लिए मिली जुली फरमाइश करताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, गोला बाजार बक्सर से जीवत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष कुमार और आयुषी और सानवी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की पसंद, गांव भड़भूजी जिला आगर मालवा से रघुनाथ मालवी, मनमोहन राजावत, मधुजी, सुषमा, मंजू, बबीता और ओम प्रकाश, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चमत्कार फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा, अनुमलक की धुन।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन के। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की पसंद है। छत्तीसगढ़ से दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। बरसात की रात फिल्म का ये गीत सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज़ रोशन ने स्वरबद्ध किया है, बोल लिखे साहिर ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं शीतल, रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा की। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट की। शाजापुर से एम एम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सदस्य। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आशा फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी, मोहम्मद जफी और बबलू मंसूरी की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार की। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर रही, श्रीमती सविता गवाणकर, प्रिंस और एकांश गवाणकर की। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुकटुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी की। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर की पसंद है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तबा खान, पोत्री आफिया खान, राउफ भाई और शाहिद भाई की। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। शोर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा यह गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गाए फिल्म शोर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच 4-लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज लोकभवन में राज्यपाल बंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। डॉ. यादव ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कामों की जानकारी दी। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि देश में अब तक 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा किसान आईडी

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। संसद समीक्षा रात्रि 8:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 पर। रात 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आप सुनेंगे मुशायरा, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित होगा। शायर होंगे आरिफ अली आलिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी, ओरिना अब्बासी, सरवर हबीब और संचालन होगा फरमानुल्ला खां का। शायरों के नाम एक बार फिर बता दें। शायर होंगे आरिफ अली आरिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी, ओरिना अब्बासी, सरवर हबीब और फरमानुल्ला खां का संचालन होगा। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा रात्रि 10:00। इसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम हीरापुर जिला सीहोर में प्रधानमंत्री मत्स्य संप्रदाय योजना के हितग्राही राहुल परमार एवं प्रगतिशील कृषक पशुपालन एवं डेयरी उद्योग प्रदीप परमार से मनोज सक्सेना की गई बातचीत। ये थी सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे नारायण खेता जी और भरोला कुमावत जी के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

नारायण खेता जी और भरोला कुमावत के गए लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राधा कुलकर्णी के गाए चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राधा कुलकर्णी की गई चंद गजलें। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का यह गीत है, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों ने गाया है। साहिर ने बोल लिखे, आर डी बर्मन की धुन है।

नैया फिल्म का ये गीत था, यसुदास ने गाया था। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। सुहाग फिल्म का ये गीत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने गीत लिखा है। शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम सुहाग।

0: नूरी फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत समाप्त हुआ। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम GeM व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्षों पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक देश 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी जारी कर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि भोपाल से विदिशा के बीच 4-लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव को

मंजूरी मिली है। प्रदेश के 3 शासकीय महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने को मंजूरी

0: कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है इस विषय पर डॉक्टर राखी तिवारी की वार्ता रहेगी ये, और काव्य पाठ होगा मदन मोहन चौधरी का। पहले सुनते हैं वार्ता डॉक्टर राखी तिवारी की, स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है।
1: प्रिय श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे बहुत ही दिल के करीब है, हम सब भारतवासियों के दिल के करीब है, और वह है स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है। हम भारतवासी गुलामी के दौरान अपने जीवन जीने के जिन मौलिक अधिकारों से वंचित रहे और अनगिनत और असहनीय यातनाओं अत्याचारों को हमने झेला, उसने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता कितनी बहुमूल्य है। भारतवर्ष की वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने के जो प्रयास किए गए, उसके संसाधनों का दोहन जिस तरह ब्रिटिश शासनकाल ने मनमानी तरीके से करके हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाया, इन सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति हमें 15 अगस्त 1947 को मिली और हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कमर कसी। वर्षों की गुलामी से उबरने के बाद हम भारतवासी इस बात को भली भांति जानते हैं, इससे वाकिफ हैं कि स्वच्छंदता किस तरह किसी समाज व उसके नागरिकों को अराजकता की ओर धकेल देती है, मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक विकास किस तरह अवरुद्ध होता है, ये हम सब जानते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी मानते हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और विकास का अवसर प्रदान करती है, जबकि स्वच्छंदता व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। दिनकर जी की कविता में स्वतंत्रता को एक ऐसे प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत श्रोताओं, यदि स्वच्छंदता को देखें तो वह एक ऐसी आग के रूप में है जो मनुष्य को भ्रमित करती है, उसे विनाश की ओर ले जाती है, एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को स्वार्थी और असंवेदनशील बनाती है। भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19, 21A और 22 में नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। श्रोताओं, इसमें 21A अनुच्छेद नागरिकों की जो स्वतंत्रता की बात करता है वो सबसे महत्वपूर्ण अर्थात जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो भारतवासियों को दी गई हैं, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, और भारत के नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता भी भारतवासियों को प्राप्त है। नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय या व्यापार या पेशा चुनने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। परंतु हम सभी भारतवासियों को यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह सभी स्वतंत्रताएं हमें तभी तक प्राप्त हैं जब तक कि हम अनधिकृत तरीके से किसी की स्वतंत्रता में दखल नहीं देते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ बिना किसी बाधा या रोक टोक के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने, बोलने और निर्णय लेने की क्षमता है। देखिए, ये वह स्थिति है जहां व्यक्ति या समूह किसी बाहरी नियंत्रण या बंधन से मुक्त होता है। स्वतंत्रता में आत्मानुशासन यानी जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी और अपनी भाग्य का निर्धारण करने की क्षमता अर्थात अपने जीवन लक्ष्यों को आजादी के साथ चुनने में सक्षम होना ही है। एक तरीके से यदि हम कहें तो स्वतंत्रता अनियंत्रित नहीं है, यह स्वयं समाज और राष्ट्र के प्रति मर्यादा से बंधी हुई है। जब हम कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत ने स्वाधीनता प्राप्त की या स्वतंत्र हुआ, तो यह स्वतंत्रता उस स्थिति का बोध कराने के लिए है जिसमें

0: किसी एक राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज या देश का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। स्वतंत्रता में नागरिकों में दायित्व बोध होता है, सामाजिक नीति नियमों और मानकों के प्रति सम्मान और अनुशासन का बोध होता है, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता और सभ्य समाज के निर्माण और विकास के लिए सहयोगात्मक और सकारात्मक सोच और दृष्टि होती है। श्रोताओं, वहीं स्वच्छंदता उस स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति, समाज या देश अपनी मर्जी से और स्वेच्छाचारिता से, यानी अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखकर नियम, कायदे, कानूनों की अनदेखी कर मनमाना आचरण और व्यवहार करते हैं। अब आप सहज ही यह कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा व्यवहार जहां अपनी ईगो या इच्छाओं की पूर्ति ही प्राथमिकता हो, वहां अराजकता की स्थिति का निर्माण होता है। आज जब हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के युग में जी रहे हैं और डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है, जहां ग्लोबलाइजेशन के कारण मार्केट इकोनॉमी पूरे उफान पर है, ऐसे में सामाजिक और नागरिक दायित्व बोधों का ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ सभ्य नागरिकों की भांति आचरण करना, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। आगामी वर्षों में यदि हम बात करें तो यही भारत के विकास का एक बड़ा मानक होगा। जी हां, हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपनी पहचान बनानी है तो कुछ भी मनमर्जी का, अनैतिक, अनर्गल, अशोभनीय कंटेंट अपलोड करने से बचना है। किसी कंटेंट को बनाते समय यह सोचना बहुत जरूरी है कि कहीं यह हमारे अन्य भारतवासी बंधु बांधवों की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा। यह हमारे सामाजिक ताने बाने, सहिष्णुता और समरसता में बाधक तत्व तो नहीं बन रहा है। संवेदनशील तरीके से ये विचार करना ही हमें ये बताएगा कि हम स्वतंत्र देश के जिम्मेदार स्वतंत्र नागरिक हैं। देखिए, आजकल टीवी में या यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अक्सर देखते हैं कि न्यूज एंकर वह खबर दिखा रहे हैं जहां कोई युवा अधिक लाइक्स या वायरल वीडियो के फेर में पड़कर बाइक पर स्टंट कर अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, या बेतुका, असभ्य, फूहड़ नृत्य या भावभंगिमाओं के साथ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सोचिए, यह सब कंटेंट हमारे बच्चों, टीनेजर्स, खासतौर से किशोर वय के विद्यार्थियों के मन पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। उनका कोमल बालमन ऐसी स्वेच्छाचारी गतिविधियों को देखकर उनकी क्या छवि अपने मन में बनाएगा। बेसिर पैर के आपत्तिजनक बयानों वाली पोस्ट किसी भी परिपक्व होते विकसित स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान पे एक बहुत ही बड़ा धब्बा और कलंक होती है। भावी युवा पीढ़ी अधिक जिम्मेदार, रचनात्मक और राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतवासी मन, वाणी और कर्म की शुचिता, पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ साथ परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई के उद्घोष के साथ ये संकल्प ले लें कि हम स्वच्छंद आचरण, विचार और वाणी से अपना अहित नहीं करेंगे और साथ में राष्ट्र का अहित भी नहीं करेंगे, बल्कि स्वतंत्र चेतना के साथ राष्ट्रहित में अपने सदकर्मों को समर्पित करेंगे। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राखी तिवारी की वार्ता, स्वतंत्रता स्वच्छता नहीं है। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मदन मोहन चौधरी का काव्य पाठ।
2: आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर हम एक प्रण लें, चलो चले उधर चले जहां पे सूर्य का सदा निवास हो उदारता भरी हृदय में, रोम रोम में नया उजास हो, हों विभूतियों में दीप्त रश्मियों के कोश दोष से परे सभी, विदुषियों में प्रस्फुटित सदा हो गूढ़ता जो मूढ़ता हरे सभी, श्रेष्ठता हो जन में गण में नायकों में दिव्यता का भास हो, चलो चलें उधर चलें जहां पे सूर्य का सदा निवास हो। जो प्रसिद्ध हैं वो सिद्ध हों, विशिष्टता के मान दंड पर खरे, यशस्वियों के यश रहें धवल सबल स्नेह सदा नेह से भरे, सौम्यता हो साधना हो साधकों में आत्म का विकास हो। चलो चलें उधर चलें जहां पे सूर्य का सदा निवास हो। बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने, लेकिन मैं कहूंगा शक्तिमान हो पुरावधा पूज्य आचरण की धारणा से पुष्ट हो, धैर्यवान हो महामहिम सभी सकारता लिए सदा अरुष्ट हो, निदेशकों में आस्था अडिग हो लक्ष्य के प्रति अनंत आस हो। चलो चले उधर चले जहां पे सूर्य का सदा निवास हो। नीतियों के शोध में समग्रता का भाव हो प्रभाव हो सुधार का, पथ प्रणम्य हो सुगम्य साध्य बाध्यता से मुक्त नव विचार का, सार्थक गहन विमर्श हो विविध विलक्षणी विषय परक प्रयास हो। चलो चले उधर चले जहां पे सूर्य का सदा निवास हो, जहां पे सूर्य का सदा निवास हो। कैसा है देश, कैसे ये देश बनता है, आइए बात करते हैं। खेतों में जुटे किसानों से, सरहद पर डटे जवानों से, यह देश बना है मंगल पर चढ़ते बढ़ते अभियानों से। हम लिए हथौड़ा हाथों में जब कलपुर्जों में खोते हैं, तब गला समय को तरल बना तनका तब तेज भिगोते हैं, माथे पर उभरी बूंदों में अपना हर आज समाया है, हर कल के हमी विकल्प हुए कल कल करता कल गाया है, हर कठिन से हमने युद्ध किया हर एक असंभव जीता है, सूरज के भाषा भाषी हम आचार संहिता गीता है, हम पांव धरा धर अपने करते संवाद वितानों से, यह देश बना है मंगल पर चढ़ते बढ़ते अभियानों से। जब मौत सामने खड़ी हुई जिद्दी तरुणाई अड़ी हुई, घड़ियों में वक्त कहाँ देखा हर घड़ी युगों से बड़ी हुई, पलकों पलकों पर सजा धजा श्रृंगार किया है कालों का, है समाधान जिज्ञासा का उत्तर है सभी सवालों का, हम दक्ष लक्ष्य को पाने में सक्षम है आग बुझाने में, साहस है संयम सदाचार अपने हर ताने बाने में, बांटा है दुनिया को हमने पाया जो सुधी सयानों से, यह देश बना है मंगल पर चढ़ते बढ़ते अभियानों से। आज विश्व के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं उसमें मैं बात करना चाहूँगा, है खुली चुनौती गिद्धों को उनसे आकाश छुड़ाएंगे, यह तय है श्वेत कपोतों को इनसे हम ही उड़वाएंगे, युग दृष्टा काल जयी हैं हम, हमने पाषाण सवारे हैं उन्हीं पत्थरों के दिल से आंखों में राम उतारे हैं, जब भी जैसा भी वक्त पड़ा यह देश उजाला लाया है, विष का विस्तार थमे क्षण में शंकर बन गरल गलाया है, भूमंडल टंकित है इसके गौरव को छुए निशानों से, यह देश बना है मंगल पर आते जाते अभियानों से, यह देश बना है मंगल पर आते जाते अभियानों से, यह देश बना है मंगल पर। आइए एक तीर्थ यात्रा करते हैं। आज के समय में हम हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, लेकिन हम भारतीय होने के नाते किन तीर्थों की यात्रा करना चाहेंगे, मैं उन तीर्थों की यात्रा आपसे कराता हूँ कि जहाँ समंदर संकल्पों का उतर झूमता आँखों में, आशा का आकाश तमाया आकर जहाँ सलाखों में, जिसकी हर दीवार बजाती डंका जिंदाबाद का, जो मंदिर है आज़ादी के संघर्षों की याद का, जिसकी मिट्टी का हर कंकर तंतु है आवेश का, अंडमान का जेल सेलुलर पहला तीर्थ देश का, अंडमान का जेल सेलुलर पहला तीर्थ देश का, जहां खोलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, वो तस्वीरें देख देख कर अंग्रेजों का दिल दहल गया, जहां तुला पर देश सजाया और प्राण धर तोल दिए, अंतिम सांस बची तो भारत माता की जय बोल दिए, जहां अमर हो युगों युगों तक यादों में आजाद है, बलिदानों के उस योगी का धाम इलाहाबाद है, बलिदानों के उस योगी का धाम इलाहाबाद है। और जिसके फूलों डाल पत्तियों ने देखी कुर्बानियां, जिसकी मिट्टी में मिलती है उनकी अमर निशानियां, जहां राष्ट्र की कसम निभाने स्वयं खून से संते हैं, उस मिट्टी के दर्शन कर हम हिंदुस्तानी बनते हैं। आज़ादी के देव हमारे कैसे थे ये देख लो, जलियांवाले तीर्थ पर भी चलकर मत्था टेक लो, जलियांवाले तीर्थ पर भी चलकर मत्था टेक लो। और जिसकी शक्ति को श्रद्धा से हिटलर शीश नवाता था, वो था जब जय हिंद बोलता लंदन तक थर्राता था, छाती ठोक कहा था उसने यह धरती आजाद है, इसीलिए ही देश हमारा हर युग में आबाद है, खून उबाले लेने लगता है जिसके आभास से, चलो कटक में वर मांगेंगे चलकर वीर सुभाष से, चलो कटक में वर मांगेंगे चलकर वीर सुभाष से। और एक बंध इसमें देना चाहूँगा, जहाँ देश के स्वाभिमान के शिखर गगन को चूमते, जहाँ देवता स्वयं शहीदों के उत्सव पर झूमते, जो है ज्योतिर्लिंग स्वयं भू मठ भी संगम घाट भी, गंगा सागर मानसरोवर सारनाथ की लाट भी, चार धाम 10 सिद्ध सभी मठ 24 जगह नहाओगे, सारे तीर्थ अधूरे जब तक कारगिल ना जाओगे, सारे तीर्थ अधूरे जब तक कारगिल ना जाओगे। और एक संकल्प स्वतंत्रता दिवस पर आप और हम सब लेते हैं कि देश पूजने जहां हिलोरे लेता है मतवाला खून, कफन बांध कर जहां जवानी के माथे पर चढ़ा जुनून, मन का चंदन जल आंखों का अक्षत शुद्ध विचार के, संस्कार के फूल पिलोकर हार बनाना प्यार के, और जहां जहां भी चौक चबूतर मिल जाए बलिदान के, उन्हें पूजना वो है सारे तीर्थ हिंदुस्तान के, उन्हें पूजना वो है सारे तीर्थ हिंदुस्तान के, उन्हें पूजना वह सारे तीर्थ हिंदुस्तान के। हमारा देश, हमारी धरती, हमारी मिट्टी क्या है? आखिर क्यों हम इस मिट्टी से इतना प्रेम करते हैं, इस धरती से इतना प्रेम करते हैं कि देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अतश्री से अक्षय अनिद्य निर्जरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये। क्या है देश की धरती? विज्ञ भिज्ञ तत्व की ये ब्रह्म के विधान की, जानती या घट घड़ी अनंत आसमान की, त्रिकाल दर्शनी भविष्य भूत आज की कला, त्वेष तम हरा अखंड ज्योत्सना ये वत्सला, कालखंड के विखंड को सहेज दृष्टि में, देखती अशेष शेष है विशेष सृष्टि में, युगाब्द से प्रदीप्त सूर्य की स्वयंवरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, देश की धरा। पुण्य का प्रताप है ये पाप नाश नी धरा, देह में ये प्राण की तरह प्रकाश नी धरा, श्वास श्वास में सुगंध की तरह बसी धरा, देश की प्रफुल्लता से खिलखिला हंसी धरा, रश्मियों के रथ समूचे खोजते हैं यह धरा, दिव्यता के पथ समूचे पूजते हैं यह धरा, ययावरी यति रहित यति युगांतरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये। क्या कर्तव्य हमारा इस धरती के प्रति? हर विहान में हो व्यक्त यह धरा सशक्त है, अस्थियां इस धरा से यह धरा ही रक्त है, दग्ध हो दिनेश शीश पर उबाल डाल दे, प्रार्थना स्नेह सिक्त यह धरा संभाल ले, सांझ का वितान श्रेष्ठ दे गमन की ओर हो, रोम रोम हो ऋणीक तज्ञ पोर पोर हो, सुहासिनी सुवासिनी सुभाषिनी धरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये। क्या दिया है हमने विश्व को, क्या दिया है कि सूक्तियां ऋचाएं श्लोक मंत्र सूत्र के चरण, इस धरा को विद्वता के रिद्ध सिद्ध व्याकरण, आयनों के शोध बोध भौतिकी कथाओं के, सत्य सामने रखे हैं वृक्ष कोशिकाओं के, इस धरा को 10 दिशाएं ताकती रहीं सदा, सभ्यताएं सर्वश्रेष्ठ आंकती रहीं सदा, धैर्यवान धीमही शुभारितम भरा है यह, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है यह। और हमारा विचार क्या है, क्यों ये धरती दुनिया में पूज्य है? कि समस्त को कुटुंब मान कर दुलारती रही, सभी सुखी सभी प्रसन्न हो विचारती रही, शक्ति के शिखर इसी के ताप सी अरण्य है, शस्य श्यामला की आरती उतार धन्य है, मत मतांतरों के मान्यता से मुक्त साध्य है, इसीलिए मनीषियों की यह धारा आराध्य है, स्वयं प्रभा शुभांकरा सुधा वसुंधरा है, यह देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है, यह अतश्री से अक्षय अनिद निर्जरा है, यह देश की धरा।
1: अभी आप सुन रहे थे मदन मोहन चौधरी का काव्य पाठ। शब्द सागर कार्यक्रम में अभी आज आपने सुनी डॉक्टर राखी तिवारी की वार्ता स्वतंत्रता स्वच्छता नहीं है, और साथ ही आपने सुना मदन मोहन चौधरी का काव्य पाठ। इसके साथ ही शब्द सागर कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

शादी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की

0: जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड नई पुरानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का पहला भाग।

अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी, भारत की तरुणाई की वो ऐसी अंगड़ाई जिसने स्वतंत्रता के पहले संग्राम का इतिहास कोटि सूर्यों की प्रभा से आलोकित किया, जो शीर्षक थी शौर्य की, संकल्प की, उत्सर्ग की, जिसकी स्मृति अब भी उद्वेलित करती है शिरा शिरा में ऊर्ज्वसित ओज की नित्य तरंगणी, सतत प्रवाहित आत्मविश्वास की उन्मुक्त धारा, एक धरोहर, एक विरासत।

0: भारतीय इतिहास की 19वीं शताब्दी और इस सदी का सन 1857।
1: जब समय की राहों पर दूर तक शौर्य बलिदान और आत्मोत्सर्ग के उजाले फैलते गए, संक्रमण की धुरी पर नियति के चक्र घूमने लगे, पीढ़ियां उठ खड़ी हुई और दमकते हुए काल क्षण अमर और स्मरणीय आख्यान का व्याख्यान बन गए।

0: पहले स्वाधीनता संग्राम में यश और कीर्ति की संवाहक दो साहसिक घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। नींव के पत्थरों की तरह जो बिछा हुआ है और उस पर टिका हुआ है भव्य भारत का ये आधुनिक प्रासाद अपने कलशों कंकुरों के साथ। वो महासंग्राम जैसी चिंगारी थी जो देखते ही देखते जन दावानल में बदल गई। ओर से छोर तक समूचे दृश्य पटल को जिसने समेट लिया।
1: आग की आकाश चुमती लपटों का एक ठिकाना थी झांसी। लेकिन झांसी ही क्यों, मेरठ, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, कहां कहां नहीं थी क्रांति की ये अंगड़ाई। पूरा का पूरा देश और उसका जीवित जागृत जनगण, किसान, दस्तकार, सामंत, सूबेदार और सिपाही मुक्ति के इस पावन संकल्प के साझीदार, हिस्सेदार थे। लोहू और लोहे से एक प्रस्तावना लिखने में जुट गए थे।
0: ये अचानक नहीं हुआ। इतिहास में अकारण या संदर्भों से कटकर अकस्मात कुछ भी घटित नहीं हुआ करता। इतिहास में कार्यों के साथ कारणों की एक नियोजित श्रृंखला होती है। हर एक घटना का पूर्वापर संबंध, वो कारण बीज जो वर्तमान के धरातल पर पीछे से पहुंचकर अंकुरित और पल्लवित होता है और एक कालखंड बन जाता है। कभी जो ललकारता है तो कभी वो पराभूत भी कर देता है। अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए जनगण कभी इसे नियति मानकर समर्पण भी कर देते हैं।
2: लेकिन जीवन और जागृत संकल्प कभी समर्पण की इस असहायता को स्वीकार नहीं कर पाते। जनगणों का हौसला कभी पस्त नहीं होता। उन्हें संक्रांति के समय की नैसर्गिक पहचान होती है। अवसर आते ही वह आलस्य और निरीता को त्याग कर परिवर्तन के अनुष्ठान में उठ खड़े होते हैं।
1: 1857 की लोक क्रांति एक ऐसा ही धन्य समय था, जनता के जागरण का समय, जनगण का चुनौतियों का मुकाबला करने वाली तत्परता और प्रस्तुति का अभूतपूर्व अध्याय।
0: अज्ञात शताब्दियों से महादेश भारत सुदूर देशों के प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। सभ्यता और संस्कृतियों का एक चौराहा जहां लोग आते गए और एक दूसरे से मिलते गए। प्रश्रय देने वाला एक पालना आगंतुकों के लिए जिसकी आत्मीयता और स्नेह सदैव ही मुक्त और प्रचुर बना रहा, जिसने हर परदेशी को अपनाया और गले लगाया।
2: यदि कोई आतताई बनकर लूटपाट के इरादे से आया तो भारत की जनशक्ति ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और बदस्तूर लौटाया। विश्व विजय का दंभ भरने वाले योद्धाओं का घमंड चकनाचूर कर दिया।
1: लेकिन आने वालों में ऐसे भी थे जो वैभव, सुख, शांति की खोज में भारत भूमि तक आए थे। उन्हें यहाँ ममत्व और निजता के अक्षय धाम मिले। अवसरों ने उन पर कोई कोताही नहीं बरती, भरपूर दिया, इतना कि उन्हें संकल्पों, सपनों के लिए संभावनाओं का आकाश और अपनों का विश्वास मिला। वो यहीं के होकर रह गए, इस सहिष्णु सदाशय माटी में घुल मिल गए।

0: भारत ने कभी भी सब्र के साथ आने वाले तूफानों के आगे सिर नहीं झुकाया, हमेशा उसका मुकाबला किया, कभी कामयाबी के साथ और कभी नाकाम होकर। और जब वो नाकाम भी रहा तो उसने अपनी नाकामयाबी को याद रखा है और अगली कोशिश के लिए अपने आप को तैयार किया है।
1: विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध 1857 में भारतीय जनगण की अंगड़ाई एक ऐसी कोशिश थी जिसने स्वाधीनता के गौरवशाली महासंग्राम की भूमिका तैयार की और अंततः अगली सदी में सफलता प्राप्त की।
2: भारत के इतिहास के ये संघर्षों से समुज्ज्वलित पृष्ठ रोचक हैं, जो भारत की जनता की अदम्य जिजीविषा की गवाही देते हैं। एक उपक्रम इन पृष्ठों में समाया हुआ है, भारत की स्वाधीनता का लोलुप विदेशियों द्वारा अपहरण, जनगण का संकल्पित संघर्ष और उसके मजबूत इरादों के द्वारा फिर से स्वाधीनता का वर्ण, एक आभ्यंतर नाटक और उसका पटाक्षेप।
0: हिंदुस्तान की कहानी में इसी जिजीविषा को शब्द देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये कोई गुप्त सिद्धांत या गूढ़ विद्या नहीं है जिसने हिंदुस्तान को इतने लंबे युगों तक जिंदा और कायम रखा। जिस चीज ने ऐसा किया है वो है उसकी कोमल मानवता, उसकी बहुरंगी और रवादारी बरतने वाली संस्कृति और जिंदगी, और उसके भेद भरे तरीकों की गहरी सूझबूझ, उसकी भरी पूरी जीवनी शक्ति की धार।
1: जीवनी शक्ति के संकेत के रूप में भारत विदेशियों के लिए एक आकर्षण की भूमि था, किस्से कहानियों कल्पनाओं का एक रूमानी देश जिसके दस्तकारों कारीगरों का हुनर धरती के पड़ावों को लांघकर देश देशों के बाजारों तक पहुंचता था और सुदूर निवासियों को चमत्कृत करता था। उनकी इच्छाएं उद्वेलित हो जाती थीं। विस्मय से वह सोचते थे कैसा होगा वह देश।
2: सदियों सदियों तक भारत भूमि का यश और हमारे दस्तकार कारीगरों का कौशल दुनिया के बाजारों में गूंज रहा था, ऐसी कथा कल्पनाएं बनकर जो सोने की चिड़िया का सम्मोहन थी। धन धान्य भरपूर भंडार, स्वर्ण का वैभव का परम धाम, स्वर्ग कहीं था तो बस यही था, यही था। दौड़ पड़े परदेसी लोलुपता से ललचाए इस महादेश की माटी को पंकिल करने।
0: जब एशिया मूर्छित और अपनी पुरानी कोशिशों की वजह से थक गया था, आत्म सम्मोहन की शलथता उसे घेर चुकी थी, तब पिछड़े हुए यूरोप में तब्दीलियों के आसार दिखाई दिए।
1: उस जमाने में भारत में ये परिवर्तन नहीं हुए। भारत और यूं कहें एशिया भर की रचनात्मक स्फूर्ति और आविष्कार खोजों की शक्ति जैसे अपंग हो गई थी, एक ठहराव आ गया था।
2: यूरोप में गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस के इस दौर में कपड़ा बुनने की उड़ती हुई तकली, घड़ी को चलाने वाले पेंडुलम, छापे खाने और भाप के इंजन बन रहे थे जो औद्योगिकरण का आधार बने। हाथों की जगह मशीनें आईं, उत्पादन बहुत बढ़ गया। बढ़े हुए उत्पादन के लिए ज्यादा कच्चे माल की जरूरत थी और जरूरत से ज्यादा तैयार माल की खपत के लिए बाजार की।
1: ये यूरोप का दृश्यपटल था। विपरीत इसके भारत के लोग हवाई बातों की बुरी लत में पड़े हुए थे। अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा, कामकाज के पुराने तौर तरीके, महाजन और सामंती शोषण से करहाती जनता, दुर्भाग्य का ग्रहण महादेश के सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह नए और पुराने के टकराव का नेपथ्य था।
0: औद्योगिक क्रांति की स्फूर्ति और जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के नाविक समुद्री रास्तों से यहां वहां दौड़ पड़े। उनकी तलाश थी वो सोने की चिड़िया जिसे उन्होंने अफसानों में देखा था।
2: वास्को डिगामा भारत पहुंचा। और उसने पश्चिमी तट पर गोवा में पुर्तगालियों की बस्ती बनाई। इस सिलसिले में आने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। उनकी अपनी दावेदारियां थीं, अपने अपने इरादे और व्यापारिक स्वार्थ थे। अलग अलग कंपनियां, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इंग्लैंड ने भारत में व्यापार करने की सनद दी थी। व्यापार और तलवार का ये खेल साम्राज्यवाद का आधार बना। 18वीं और 19वीं सदी के इतिहास को इसने लिख

0: ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में थॉमस रो को जहांगीर के दरबार से व्यापारिक कोठियां बंगाल और दक्षिण भारत में स्थापित करने की इजाजती सनद मिली थी और 100-125 साल बाद प्लासी की लड़ाई के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को पुख्ता कर दिया।
1: इस छोटे से कालखंड में अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को परास्त ही नहीं किया, अब वह भारत को हड़पने के इकलौते दावेदार थे। भारत के समुद्री किनारों से उठा विनाश का ये बवंडर पसरता चला गया। फिरंगियों को अपने पांव जमाने के लिए कई जगहें और दुर्लभ संधियों षड्यंत्रों के कई बहाने मिलते गए। वो काली आंधी की तरह फैलते गए।

0: अब अंग्रेज एक आवश्यक उपस्थिति बन चुके थे, हर कहीं हर जगह। क्रूर षड्यंत्रकारी सब कुछ निगलने हड़पने के लिए जीभ लपलपाते हुए आश्रय देने वाले देश को नेस्तनाबूद करने पर आमादा, जिनकी नीति और कारगुजारी थी आपस में लड़वाना और जनता को कमजोर करके बंदर बांट करना, सत्ता को हड़पना और प्रभुत्व तथा सर्वोपरिता हासिल करना।
1: और हिंदुस्तान के हालात इसी लायक थे। महान मुगलों की ताकत औरंगजेब के बाद से क्षीण हो चली थी। आपसी मारकाट, छीना झपटी और उत्तराधिकार के लिए शहजादों की कलह से दिल्ली का विगत वैभव अस्ताचल था और धाक, रुतबा और मर्तबा जैसे गुजरी हुई कहानी बन चुके थे। देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बिखर गया था जो निरंकुश और स्वच्छंद थे।
2: बादशाहत एक खोखला प्रतीक थी, एक ऐसा भ्रम जिसकी परछाई तक उसके आसपास नहीं थी।
0: और दूसरे शासक थे, पूर्व में बंगाल का नवाब, दक्षिण में हैदर अली और पेशवाई के सरदार सूबेदार, जो यहां वहां खुद मुख्तार रियासतें बना चुके थे। उत्तर पश्चिम में सिख, अवध में फिर नवाब। इस कमजोर ढांचे का ताना बाना बिखरा हुआ था। लक्ष्य की एकाग्रता उनके पास नहीं थी।
1: कंपनी व्यापारियों की जमात थी, उसने भारी मुनाफा कमाया और इस मुनाफे की कीमत जनता को चुकानी पड़ी। डोजी ने विदा होते समय कहा था, कंपनी को 40 लाख पौंड का लाभ मिला है और इंग्लैंड जाने वाले जहाजों का वजन दुगना हो गया है। लेकिन बस व्यापार ही नहीं, वो तो लंबे फायदे का सौदा कर रहे हैं। इसी देश की दौलत से उन्होंने फौजें खड़ी कर दी, मुट्ठी भरो काम और हजारों देशी सिपाही जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, जी जान लगाकर, सिर पर कफन और परंपराओं का केसरिया बाना पहनकर, ये भूल कर कि वो किसके लिए

0: कंपनी की साजिशों, संधियों और युद्धों के सिलसिले में एक के बाद एक राज्य प्रदेश डूबता चला गया।
1: पलासी की लड़ाई इस सिलसिले की पहली कड़ी थी, जिसे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सोपान माना गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सहयोगी फ्रांसीसियों को हराकर कंपनी ने पहले बंगाल पर अपना कब्जा किया और यहां से आगे बढ़कर उड़ीसा को हत्या लिया।
2: 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में मैसूर की पराजय और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर राज्य अधीनस्थ हुआ।
1: सिंध पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। पहले अफगान युद्ध में अंग्रेज सेनाएं गुजरी थीं, इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और सिंध के सामंतों को धमकी दी कि वह अधीनता स्वीकार करें। इसके बाद सिंध को राज में मिला लिया गया।
2: पंजाब में सिखों के खिलाफ अभियान छेड़कर स्थानीय देशद्रोहियों की मदद से ब्रिटिश सेनाओं ने आजादी छीन ली। सिख मूल रूप से किसान थे और मजहबी दीवारों के खिलाफ प्रेम और भाईचारे का आंदोलन चला रहे थे। सिखों की पराजय से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब तरफ उपनिवेशवाद पसर गया।

0: भारतीय राज्यों को उपनिवेश बनाने का कंपनी का एक तरीका था। पहले वो राजाओं नवाबों से सहयोग और सहायता के समझौते करके उनके इलाकों में कंपनी की फौजें भेज देते थे, जिनका खर्च हिंदुस्तानी सामंत को उठाना पड़ता था। वो कंपनी के कर्ज में डूबता चला जाता था और आखिर में इस बहाने से अंग्रेज उसकी अलमदारी को राज में मिला लेते थे।
1: अवध में यही हुआ। पहले संधि के बाद कंपनी की फौज आई। इस फौज का खर्च उठाने के लिए नवाब ने अंग्रेजों की सलाह से रियाया पर नए कर लगाए। जनता में इससे असंतोष फैला, विरोध हुआ। अंग्रेजों को बहाना मिला कि नवाब शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है, बल्कि विद्रोहियों की सहायता और समर्थन कर रहा है।
2: नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कोलकाता भेज दिया गया। अवध के लिए लॉर्ड कैनिंग ने फरमान जारी किया। अवध प्रांत की भूमि की मिल्कियत के अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस अधिकार का उपयोग वो जिस प्रकार चाहेगी उस प्रकार करेगी।
0: इस तरह भारत का स्वतंत्र सूर्य धीरे धीरे डूबता जा रहा था और पराधीनता की कालिक धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। लेकिन स्वाभिमानी देश की तरुणाई इससे बेखबर नहीं थी। पराधीनता का दंश स्फीत रुधिर में तीखा होकर कसक रहा था। एक चिंगारी थी जो बेचैन होकर आकार ले रही थी। कंपनी की फौज के सिपाहियों में, देश के किसानों में, स्थिति की असहायता से उबे हुए सामंतों में, अधिकार खो चुके रजवाड़ों में क्रांति की प्रस्तावना लिखी जा चुकी थी।
1: अंग्रेजी विस्तार की एक विंध्याचली बाधा थे मराठे। मुगल साम्राज्य के पराभव काल में ये जाबाज मराठे समूचे उत्तर भारत तक फैल गए थे। मराठों की शक्ति का सामना अंग्रेजों से हुआ। मराठा सूबेदारों की रियासतें यहां वहां थीं। ग्वालियर, झांसी, इंदौर और बड़ौदा, इन रियासतों की अपनी अपनी सैन्य शक्ति थी। पूना का पेशवा इन मराठों का सर्वोपरि पंत प्रधान था। शुरू में हुए आमने सामनों में मराठों ने अंग्रेजों को खूब छकाया,
2: लेकिन मराठे कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेजों का छल कपट भारी पड़ा। सूबेदारों की प्रतिस्पर्धा, आपसी जलन, ईर्ष्या विद्वेष ने उन्हें हरा दिया। वो इतिहास के दुर्लभ क्षणों की चुनौती एकजुट होकर झेल नहीं पाए
1: और कंपनी ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। संधि में पेशवा को विठुर की स्वतंत्र जागीर अता फरमाई गई और राजसी खर्चों के लिए वार्षिक 8 लाख रुपयों की पेंशन मंजूर की गई।
2: पेशवाई इतिहास से विदा हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने दरबार, लाओ लश्कर, मुसाहिबों, स्त्रियों समेत पूना से बिठूर के लिए रवाना कर दिए गए।
0: पेशवा के साथ आए परिवारों में से एक मोरोपंत तांबे का परिवार था। इस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। वो ऐतिहासिक तारीख थी 19 नवंबर सन 1836 और इस कन्या का नाम था मनु।
3: अरे वाह, मुलगी झाली का, लड़की हुई है, लड़की हुई है ना।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का पहला भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य

फैसला लिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भोपाल में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के मुद्दों पर चर्चा करनी है तो संसद चलने देनी चाहिए। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। और भोपाल में आज से राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। अपर लेक स्थित बोट क्लब के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

आज की ये खूबसूरत शाम, आसमान में छाए बादल, हवा में घुली हुई मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और बीच बीच में बरसती बारिश की बूंदें, सच कहूं तो आज मौसम ने न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से सबका मन मोह लिया है, बल्कि वातावरण को भी संगीतमय बना दिया है। जरा गौर कीजिएगा, छत पर गिरती बारिश की बूंदें हो, पेड़ों से टपकता पानी हो या सड़कों पर पड़ती बूंदों की आवाज, हर आवाज की अपनी एक लय, अपना एक सुर होता है। और शायद संगीत की खूबसूरती भी यही है कि वह केवल साजों में नहीं, हमारे आसपास की हर आवाज में छिपी होती है। और जब बात सुर, ताल और एक अनोखी धुन की हो तो आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आज दुनिया मना रही है विश्व स्टील पैन दिवस। नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियोज की घड़ी पर समय हो रहा है 5:03। आवाज है आपके रेडियो साथी तुषार तमिल सेना की। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

उदित नारायण की आवाज में सुना ये गीत फिल्म वीर जारा से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था मदन मोहन का। दोस्तों, संगीत की दुनिया में आपने तबला, ढोलक, गिटार और पियानो जैसे कई वाद्य यंत्र सुने होंगे, लेकिन एक वाद्य ऐसा भी है जो देखने में जितना अनोखा है उसकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत और दिलचस्प है। उसका नाम है स्टील पैन। यह एक विशेष प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है जिसका विकास कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में हुआ। पहली नज़र में यह आपको किसी बड़े धातु के कटोरे जैसा दिखाई दे सकता है। इसे स्टील से बनाया जाता है और इसकी सतह पर अलग अलग हिस्सों को इस तरह तैयार और ट्यून किया जाता है कि उन्हें छोटी स्टिक से बजाने पर अलग अलग सुर निकलते हैं। इसकी चमकदार और मधुर ध्वनि कैरेबियाई संगीत की एक खास पहचान बन चुकी है। इसके इतिहास की कहानी भी बड़ी रोचक है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों ने अलग अलग धातुओं की वस्तुओं से संगीत तैयार करने के प्रयोग शुरू किए। धीरे धीरे पुराने ड्रम और स्टील के कंटेनरों को आकार देकर एक वाद्य यंत्र तैयार किया गया जिसे आज हम स्टील पैन के नाम से जानते हैं। यानी सोचिए दोस्तों, जिस धातु को सामान्य परिस्थिति में हम शायद बेकार समझकर छोड़ देते, इंसानी रचनात्मकता ने उसी में संगीत पैदा कर दिया और यही स्टील पैन की कहानी को खास बनाता है। यह केवल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी, कम्युनिटी और कल्चरल आइडेंटिटी की कहानी भी है। स्टील पैन का त्रिनिदाद और टोबैगो की संस्कृति से बहुत गहरा रिश्ता है। वहाँ के प्रसिद्ध कार्निवल समारोह में स्टील पैन संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। कई कलाकार मिलकर जब स्टील पैन बजाते हैं तो ऐसे समूह को आमतौर पर हम स्टील बैंड या स्टील ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। अलग अलग आकार और अलग अलग सुर वाले स्टील पैन जब एक साथ बजते हैं तो पूरा वातावरण संगीत से भर उठता है। श्रोताओं, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अगस्त यानी आज ही के दिन को विश्व स्टील पैन दिवस घोषित किया। इसके पीछे उद्देश्य था स्टील पैन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दुनिया के सामने लाना तथा संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा, सामाजिक जुड़ाव और सतत विकास जैसे विचारों को प्रोत्साहित करना है। तो आज विश्व स्टील पैन दिवस पर संदेश यही है कि अपनी संस्कृति और संगीत को सहेजिए, नई चीज़ों के साथ प्रयोग करते रहिए और अपने आसपास मौजूद छोटी छोटी चीज़ों में भी क्रिएटिविटी तलाशिए। तो ये थी कुछ बातें विश्व स्टील पैन दिवस के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज में सुनाए गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। गीतकार थे जयदीप साहनी, संगीत था सलीम सुलेमान का। साथियों, अब समय है हमारे युवा साथियों के लिए एक रोजगार सूचना का, तो तैयार हो जाइए, अपने साथ कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी IBPS द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्लर्क CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के कुल 11,403 पोस्ट के लिए 1 अगस्त से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदक की आयु 28 वर्ष से

अधिक नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। तो श्रोताओं ध्यान से सुनिएगा कि अंतिम तिथि है 21 अगस्त, आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। IBPS है क्लर्क CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के कुल 11,403 पोस्ट हैं। तो ये थी कुछ बातें रोजगार सूचना से संबंधित। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

कमाल खान की आवाज में सुनाइए गीत फिल्म डर्टी पिक्चर से। गीतकार थे रजत अरोड़ा, संगीत था विशाल शेखर का। दोस्तों, आज जब बाहर बारिश की वजह से हवा में ताजगी है और हमारे आसपास हरियाली कुछ और निखर गई है, तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या हमारा भविष्य भी इतना ही साफ, हरा भरा और खूबसूरत हो सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें ऊर्जा के इस्तेमाल का अपना तरीका बदलना होगा। और यहीं से बात शुरू होती है स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य की। हमारे घर की बिजली हो, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हो या बड़े बड़े उद्योग, इन सभी को ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लंबे समय से दुनिया अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर काफ़ी हद तक निर्भर रही है। समस्या यह है कि इन्हें जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो हमारे जलवायु के लिए हानिकारक होती है। इसके मुकाबले सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी और जल विद्युत जैसे कम कार्बन तथा रिन्यूएबल एनर्जी हमें अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प प्रदान करते हैं। जब सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाते हैं, तो बिजली उत्पादन के दौरान कोयला जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह हवा की शक्ति से घूमने वाली विंड टर्बाइन बिजली पैदा करती है, यानी प्रकृति में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने स्टील पैन की बात की, जहां इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी से धातु को संगीत में बदल दिया। और स्वच्छ ऊर्जा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां इंसान अपनी तकनीक और क्रिएटिविटी से धूप और हवा को उपयोगी ऊर्जा में बदल रहा है। हरित भविष्य का मतलब केवल सोलार पैनल या विंड टर्बाइन लगा देना नहीं है। हरित भविष्य का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और प्रकृति पर दबाव भी कम पड़े। इसमें युवाओं की भूमिका शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरित भविष्य केवल सरकारों और वैज्ञानिकों का प्रोजेक्ट नहीं है, यह हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है। आने वाले वर्षों में नए इंजीनियर, उद्यमी, शोधकर्ता और इनोवेटर ऐसी तकनीकों पर काम करेंगे जो ऊर्जा को और स्वच्छ, सुलभ और प्रभावी बना सकें। अगली बार जब आप किसी छत पर सोलार पैनल या दूर कहीं घूमती हुई पवन चक्कियां देखें, तो उन्हें केवल मशीन मत समझिएगा। वे उस बदलाव की तस्वीर है जिसमें विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि साथी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रोताओं, ये थी कुछ बातें स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य को लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज में सुनाए गीत फिल्म नमस्ते लंदन से। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था हिमेश रेशमिया का। साथियों, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए आपके रेडियो दोस्त तुषार तिमिल सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म सूर्यवंशी का यह गीत। रश्मि विराग के लिखे इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने। म्यूजिक कंपोजर हैं जैम 8।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है देवशी खंडूरी ने और संगीत है गौरव दासगुप्ता का। ये गीत आइए हम सुनते हैं फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया से।

सचेत टंडन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जर्सी का ये गीत। शैली ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था सचेत परंपरा ने। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं। कार्यक्रम में आइए आपको अब सुनवाते हैं फिल्म जुग जुग जियो से ये गीत। कविता सेठ और कनिष्क सेठ की आवाज़ों में ये गीत आइए आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत आइए सुनते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म लाल सिंह चड्ढा किसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए।

0: पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। साथ ही विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को भी कहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य आपदा कमान और नियंत्रण केंद्र के सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश में अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति से लोगों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और प्रभावितों और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे कर्मचारियों और स्थानीय जन से वर्चुअली संवाद किया। और प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है

0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: गोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं।
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जॉनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
1: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
1: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
1: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
1: जी।
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
1: अबुआ दिसम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओं, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी

0: audio@cieat.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नौ।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरजन बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: की
1: जय।
0: भारत माता की।
2: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, जी चाहता है इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
3: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। April 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
4: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
5: भारत माता की
1: जय।
4: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
5: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
1: रोलेट एक्ट वापस लो।
5: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
5: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
4: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
5: मारो, मारो,
4: सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
5: सत्यपाल को
1: रिहा करो।
5: डॉक्टर किचलू को
1: रिहा करो।
5: सत्यपाल को
1: रिहा करो।
3: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: masumları laf çiğdiği kırdı masi.
1: Baba.
0: Masi, masumları laf çiğdiği.
1: Agar niye, agar niye? Ella. Ay Ella lau. Ay ni puttara te tan lau lau.
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार

0: यस सर।
1: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
0: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
1: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
0: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
1: क्या वार्निंग नहीं दी?
0: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
1: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
0: मेरा मकसद गोली चलाकर फीड को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।

0: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता। छह एक कम छह,
1: छह एक कम छह,
0: छह दुनी बारह,
1: छह दुनी बारह।
2: राहुल खेले नहीं आ रहे?
0: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह ती अठारह,
1: छह ती अठारह,
0: छह चौक।
3: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
4: अरे मीना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
0: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
4: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
0: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
4: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
0: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
4: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
3: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
1: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
0: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
1: करता है पर पहाड़ा।
0: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
1: फिर पहाड़ा कब?
0: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
0: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
1: पक्का?
0: पक्का।
1: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
0: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
0: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
3: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
5: तो श्रोताओ इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे का ये गीत, अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में। सुधाकर शर्मा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म कूली नंबर 1 से। चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

फिल्म खुद्दार का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को शब्द दिए राहत इंदौरी ने, संगीत था अनु मलिक का और इस गीत को गाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में, फिल्म हम आपके हैं कौन से। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत दिया लक्ष्मण।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह

0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान की पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 और 10:06 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 10:00, इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे देवेंद्र मुर्देश्वर का राग पुष्प चंद्रिका पर बांसुरी वादन। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी बुधवार 12 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए देशभक्ति गीत। 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05

0: पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन राग होगा बिहाग। इसका प्रसारण 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का दूसरा भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:30 पर। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे खरीफ दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर डॉक्टर सुरेंद्र धृत लहरी की भेंट वार्ता। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8:15 पर किया जाएगा। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से होगा और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 12 अगस्त 2026 बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का संदेश दिया।
3: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
2: इससे पहले संसद में मंगल मिलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और एनडीए के सांसदों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम का जय घोष किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 कानून बन गया है। लोकसभा ने 30 जुलाई को जबकि राज्यसभा ने इससे एक दिन पहले विधेयक को मंजूरी दी थी। नए कानून के तहत मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान संरक्षण दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। कानून के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। बैठक में भोपाल विदिशा मार्ग को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन की मंजूरी दी गई। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत करीब 1,757 करोड़ रुपए होगी और सड़क के साथ शोल्डर भी बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इछावर के और खेड़ी में सोयाबीन अनुसंधान के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने का फैसला भी किया। बैठक में जनविश्वास अभियान की भी समीक्षा की गई और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया,
4: जनविश्वास अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में हमारा जो जनविश्वास अभियान है, इसके शुक्रवार के दिन की जो रिपोर्टिंग है पूरे प्रदेश में, चाहे शासकीय स्तर अधिकारियों की हो या राजनेताओं की हो, बहुत ही बढ़िया इसके परिणाम निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगामी समयों में जो स्थानीय स्तर की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं उनके निराकरण के लिए और सरकार से सीधे संवाद के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हमारी ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कोशिश है सरकार की।
2: प्रदेश मंत्री परिषद ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक कुल 44,515 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, सिकल सेल और निःशुल्क दवा जाँच जैसी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएंगी। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए 1,159 करोड़ रुपए से ज्यादा और जिला स्तरीय अमले के लिए 654 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय से 450 रुपए में गैस रिफिल योजना के तहत 22 लाख पात्र लाडली बहनों के खातों में 99 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। ये राशि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर पीएमयूआई श्रेणी की पात्र महिलाओं को दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समग्र पेंशन योजना के तहत 35 लाख हितग्राहियों के खातों में 211 करोड़ 53 लाख रुपए की पेंशन राशि भी अंतरित की। इसके अलावा डॉ. यादव ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 32वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज भोपाल मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महोत्सव में आधुनिक कृषि उपकरणों और उन्नत खेती के तरीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल अहमदाबाद में प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में आयोजित मेगा निवेश रोड शो में मुख्यमंत्री उद्योग जगत को मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों और सुविधाओं की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री गुजरात के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। इस दौरान कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ वन टू वन बैठकें होंगी। बैठकों में ऊर्जा, वस्त्र, विनिर्माण, अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी।

बात मौसम की। प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय स्थित सिचुएशन रूम पहुंचकर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से सीधे बातचीत की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि अब तक प्रदेश में 527 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। खंडवा में बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में मानसून टर्फ और लो प्रेशर एरिया के असर से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी कई जिलों में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज के दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी जमीन में पैदा होने वाले बेहद कम आवृत्ति के कंपन को कई किलोमीटर दूर तक महसूस कर सकते हैं। उन्हें जंगल का इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारम्भ 18 अगस्त को होगा। आगरमालवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 13 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। मंदसौर में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के आगामी शिविरों की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले के थांदला में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 935 लीटर से ज्यादा घी जब्त किया है। बुरहानपुर जिले में इस मानसून अब तक औसत बारिश का करीब 71% पानी बरस चुका है। खंडवा जिले के सिंगाजी क्षेत्र की कावेरी डिमर और उनकी छोटी बहन दीपिका डिमर ने भोपाल में आयोजित अश्मिता नेशनल कैनोइंग प्रतियोगिता में कुल 6 पदक जीते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए प्रोविजनल रूप से चयनित यात्रियों को अग्रिम हज राशि जमा करने के लिए अब अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव की तरह मनाएं। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट का फैसला, भोपाल विदिशा मार्ग होगा 4 लेन। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 44,515 करोड़ रुपए मंजूर। और भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, 527 लोगों का रेस्क्यू। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: किसानवाणी,
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
4: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान बानी कार्यक्रम में सभी किसान भैया बहनन को रीता बहन की राम राम। भैया बिन्ना हरो, औषधीय पौधा जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, सर्वगंधा और स्टीविया जैसे कई पौधा होते हैं जे पौधा दवाई बनाने में उपयोग करे जाते हैं। अच्छी बात है कि औषधियों की खेती कम लागत और कम पानी वाले क्षेत्र में भी बम्पर उत्पादन और मुनाफा देते हैं। आज के समय में फार्मास्यूटिकल्स उद्योगन में ई की लगातार मांग बढ़ रही है। सरकार के द्वारा ई पर किसानन को विशेष सब्सिडी दी जाती है।

0: औषधि पौधन की खेती करवे को सबसे बड़ो फायदा होत है कि जे कम उपजाऊ और बंजर जमीन पे भी आसानी से उग सकत है। संग में कम खाद और कम कीटनाशकन की आवश्यकता होत है ये उगाए के लाने। आज के समय में जड़ी बूटियों की भारी मांग है। एक लाने सरकार भी किसानन को कई योजनाएं बना के देत है जिससे कि किसान फसलों की खेती कर सके और आसानी से बाजार में बेच के लाभ कमा सके। उन्नत है विषय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हितग्राही राहुल परमार से बातचीत। स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित ई कार्यक्रम में बात करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी के माध्यम से लगातार आपके लिए ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, आप जिन्हें आइकॉन बना सकते हैं अपना, क्योंकि ये वे किसान है बहुत छोटे स्तर से चलकर आज एक ऐसी ऊंचाई पर आए हैं कि लोग उन्हें उनके उस काम से उस नाम से जानने लगे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ राहुल परमार जी से। भोपाल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हीरापुर गांव के किसान हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और आज पूरे प्रदेश में उनका एक नाम है, उनका काम जो किया गया है उसकी एक पहचान है मालवा फिश हैचोरी के नाम से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
1: मैं सबसे पहले तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा।
2: मेरा नाम राहुल परमार है, मैं ग्राम हीरापुर से हूँ, जिला सीहोर से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाया गया है
1: जी।
2: इस प्रोजेक्ट में मूलतः मछली के बीज का उत्पादन होता है
1: जी।
2: हाँ, और ये अभी लगभग 10 एकड़ के आसपास में है और यहाँ से आसपास के 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहाँ के किसान हमसे प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं और उनके बड़े बड़े जलाशयों में मछली का बीज जाता है।
1: मैंने जब पूरा ये आपका फार्म देखा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, कुछ बड़े पॉन्ड्स बने हुए हैं, पक्के भी हैं, कच्चे भी हैं, इन सब में कितने पॉन्ड्स हैं और कितना काम होता है इस पर?
2: देखिए, ये हैचरी एक टेक्निकल चीजें हैं ये बिल्कुल। और जैसे आपने यहाँ देखे होंगे करीबन 17-18 तालाब हैं, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग है, किसी की डेप्थ ज्यादा है, किसी की कम है, तो ये अलग अलग पर्पज से यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मत्स्य प्रजनक के, कि जिन मछलियों के माध्यम से हमें अंडे और बीज प्राप्त होते हैं तो उनको मत्स्य प्रजनक कहा जाता है। तो ऐसे प्रजनक रखने के लिए तालाब की गहराई होती है 6 से 8 फीट, यानी गर्मी में उनको ठंडक बनी रहे, पानी गर्म ना हो। और उन तालाबों का साइज भी बड़ा है क्योंकि जिसमें अच्छे से बड़ी मछलियां घूम पाए, क्योंकि वो साल भर में रखनी होती है और पानी का एक लेवल भी मेंटेन करना होता है। और जो आपने छोटे तालाब देखे हैं उनको कहते हैं नर्सरी पॉन्ड, जिनमें हम जो छोटी मछली के बीज होते हैं जिन्हें जीरा या स्पॉन कहते हैं, तो उनको हम 8 से 9 दिन उन तालाबों में रखते हैं और वो बड़ी संख्या में रहते हैं, यानी एक ही तालाब में 12-15 लाख मछली के बच्चे रहते हैं। फिर जब उनका थोड़ा सा साइज आधा इंच के आसपास आता है 9 से 10 दिन में, तब हम उसको पलटी करते हैं, तो फिर वो रेयरिंग पॉन्ड में जाते हैं। रेयरिंग पॉन्ड का मतलब कि उनकी गहराई, तालाबों की गहराई 4 फीट के आसपास रहती है और बच्चा जैसे ही 1 इंच के आसपास होता है तो फिर किसान बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनमें ले जाना शुरू कर देते हैं।
1: अब इस समय जो आपका जो बीज है मछली का, ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है?
2: देखिए, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा शुरू से कि मछली बीज के सीजन शुरू होता है आपके मई के आसपास से।
1: ठीक।
2: मई से पहले प्रजनकों को अच्छा आहार संतुलन सब कराया जाता है। मई के समय में कुछ मछली जैसे ही मानसून आने वाला होता है ब्रीड के लिए तैयार होता है। जैसे ही बारिश आना शुरू हुई और बड़े किसानों के तालाबों में पानी आया, जैसे बड़े बड़े जो जलाशय हैं, तो वो जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट महीने में बीज की शुरुआत हो जाती है, तब किसान लेने आते हैं।
1: इतने लंबे समय तक इनको संरक्षित रख पाना, उनकी खान खुराक, ये सब कैसे मैनेज होता है?
2: देखिए, बच्चा जैसे ही उत्पादन हुआ उसका, तीसरे दिन से उसका भोजन शुरू हो जाता है। अगर आपका आहार प्रबंधन सही नहीं है तो आपको आपके तालाब में 10 लाख बच्चा दिख रहा है, ठीक, आप इसके 4 से 5 दिन बाद देखेंगे तो आपको हो सकता है वो आधा ही मिले, 5 लाख मिले, मर जाता है। उस नर्सरी पॉइंट में मेंढक का बच्चा तो नहीं आ गया या कोई कीट पतंग जो पानी वाले हैं वो तो नहीं आ गए, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना। है तो सबसे पहले तालाब का प्रबंधन में तालाब को सुखाया जाता है और महुए की खली का छिड़काव होता है ताकि उसके कीट पतंग सब मर जाए, क्योंकि दवाई का प्रयोग करोगे दवाई का असर रहेगा तो फिर वो बच्चों पे भी नुकसान करेगा। फिर उसमें प्लैंकटन कैसे बने जो मछली के लिए प्राकृतिक आहार होता है, एक सफेद छोटे छोटे कीड़े होते हैं बहुत माइक्रो लेवल पे, उसको मछली का बच्चा खाता है तो उसको कैसे डेवलप कर ले, तो वो एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया है, यानी किसी चीज में हल्का सा सड़न की जो प्रक्रिया शुरू होगी तो वो जीभ को मछली का बच्चा खाता है तो वो बनाना पड़ता है, तो 2 से 3 दिन बाद ये प्लैंकटन विकसित हो जाते हैं और मछली के बीच वो खाते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई बड़े बच्चों को हमारा किसान क्या खिलाएं, तो फिर वो उसके लिए कमर्शियल फीड भी आते हैं, तो कुछ घर भी बनाते हैं कुछ रेडीमेड कंपनी लाके भी खिलाते हैं।
1: पूरी लेंथ में आने में अपनी मछली को कितना समय लग जाता है?
2: देखिए वो जलाशय पे निर्भर करता है और खाना खुराक पे निर्भर करता है। किसान जितना समझदार होगा होशियार होगा खाना खुराक के प्रति, वो उसका संचयन उस तरीके से करेगा तालाब में, यानी अगर अगर ज्यादा मात्रा में हाई डेंसिटी में मछली बीज का संचयन किया तो मछली की ग्रोथ प्रभावित होगी, बच्चा जिंदा रहेगा लेकिन बच्चे का साइज ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सरकारी मानक है कि इतने हेक्टेयर पे इतने हजार बच्चे डालना चाहिए, तो सरकार ने ये मानक तय किए हुए हैं, कई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उन्हें बताएं, अगर किसान उस शासकीय मानकों के अनुरूप मछली बीज डालेगा तो फिर ये निश्चित ही है 4 से 5 महीने के अंदर आधा किलो प्लस साइज उसको देखने को मिलेगा और उसकी उसी समय से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो हार्वेस्टिंग करता रहेगा रोज 10-20 किलो 50 किलो या 1 क्विंटल निकाला तो उसका साल भर रोजगार रहेगा, क्लोज सीजन रहता है उसको छोड़ के, तो बाकी उसकी आजीविका वो अच्छे से चल सकता है, पर इसमें डेंसिटी का विशेष ध्यान रखना है उसे।
1: अच्छा, हर किस्म की मछली के लिए अलग डेंसिटी पे होगी?
2: नहीं, उसमें क्या होता है जैसे इंडियन मेजर कार्प है, ये 6 मछलियां हैं जैसे कतला कामन ग्रास रेहू नरेन मृगल, ये 6 फीट पानी में अगर हम लेयर की बात करें तो कतला सबसे ऊपर और कामन कार्प सबसे नीचे, यानी आदर्श स्थिति ये 6 फीट पानी तो होना चाहिए, इससे कम नहीं हो तब इन मछलियों को 40-30-20 के अनुपात में डाला जाता है। अगर एक ही तरीके की मछली ज्यादा डाल दी तो फिर उसमें दूसरी मछली की ग्रोथ प्रभावित होगी, इसलिए इसका अनुपात आवश्यक है।
1: रंगीन मछली के लिए क्या करना होगा?
2: रंगीन मछली यूनिट हमारे पास हैचरी है रंगीन मछली यूनिट की भी, और इसका प्रोडक्शन भी होता है, अभी काम हमारा कुछ चालू भी है इस पे, और हमने ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी ब्रिड जैसे मोली गप्पी गोल्डफिश चिकलेट कोई कार्प ये सब मछलियों का हमने प्रोडक्शन भी किया है, तो हमें समझ में आया कि अपने क्लाइमेट में ये मछली सरवाइव कर जाती है, तो फिर हमने इस यूनिट को लिया और अब हम इसका उत्पादन करके पास के मार्केट में इसकी सप्लाई करेंगे, और हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बाहर से ज्यादा बच्चा ना आए, छोटे छोटे किसान यही उत्पादन करें, तो हम ऐसे किसानों की कुछ चेन भी बना रहे हैं तो जिससे किसानों को डायरेक्ट लाभ हो। कि क्या है, व्यक्तिगत तौर पे तो आप यूनिट बना ली आपको लाभ हो रहा है, पर भाई शासन की मंशा है कि हमारा किसान सशक्त बने, तो हमारा ये उद्देश्य है इस यूनिट पे कई किसानों विभाग के माध्यम से भी आते हैं ट्रेनिंग भी लेते हैं, ये स्टार्टअप मॉडल को समझते हैं और किस तरीके से इस मॉडल से जुड़ के वो उनकी आय बढ़ा सके। कई कॉलेजों यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एमओयू भी है, जैसे वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहाँ निरंतर आते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के जो बच्चे होते हैं उनका रावा का जो प्रोग्राम होता है उसमें यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन स्टूडेंट को भी जब उनकी पढ़ाई होगी तो उन्हें स्वरोजगार की प्रेरणा मिलेगी, उनको बिजनेस मॉडल आज समझेंगे, और ये मॉडल अगर वो अपने जिले में करते हैं तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे रोजगार पैदा होगा। और पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अगर किसान काम कर रहा है तो बहुत तकनीकी रूप से काम करेगा तो उसकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।
1: राहुल जी आखिरी सवाल, टर्नओवर कितना है?
2: देखिए ये सवाल बहुत लोग करते हैं, आप कितना कमा लेते हैं, जबकि 5 साल हो गए हमें, आप यकीन मानेंगे हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हम इसी व्यवसाय में तुरंत लगा देते हैं, क्योंकि हमें व्यवसाय लगातार बढ़ाना है। हमने ये 2.5 एकड़ से शुरू किया था और आज करीबन 11-12 एकड़ में हमारी निजी भूमि में तालाब है, बाकी हम ऐसे 500-700 एकड़ तालाबों से जुड़े हुए हैं, कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है जैसे कई समिति वाले ऐसे होते हैं उनके पास पैसे का अभाव है, तो हमने उनसे किसी तरीके का एक टाई अप कर रखा है कि भाई आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन आप हमें देंगे तो हम इसमें आपको बच्चा मुफ्त दे देंगे, और किसी तरीके का आर्थिक वो चाहिए तो ऐसा सहयोग कर देंगे। मतलब इसको पार्टनरशिप ना कहके एक सहयोग के रूप में। तो इस तरीके से आज हमारे पास रकबा 500 से 700 एकड़ रकबा हो चुका है जिसमें हम डायरेक्ट फार्मिंग कर रहे हैं।
1: वाह जी, अगला पड़ाव क्या है अब आपका?
2: अगला पड़ाव यही है कि जो हमारे ऐसे तालाब जिनमें 12 महीने पानी नहीं रहता, इनको किस तरीके से हम मछली के बड़े बीज उपलब्ध करा सकें ताकि ये बारहमासी जलाशय की तर्ज पर उन जलाशयों में भी मछली का उत्पादन कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ कुछ बड़े जलाशयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पैन कल्चर और इस प्रकार की कुछ पद्धति अपनानी होगी जो इस क्षेत्र में नवाचार का काम करेगी। तो कुछ जगह हुआ भी है, कुछ जगह असफल भी हुआ है, तो हम उसी पे थोड़ा और अध्ययन करके और किस तरीके से इसको जोड़ सकें और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े डैम हैं इनसे कैसे कनेक्ट करके हम इस नीली क्रांति में सहभागी बने और मध्य प्रदेश में इस अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों पे ले जाएं।
1: हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैया बिन्नहरो, अब सुनते हैं एक श्रृंगार गीत, ये गाँव है अनरत लाल बैरसिया ने।

0: जे सुनी आपने लोक गीत जे गाओ हतो अनरत लाल बैरसिया ने। भैया बिन्नाहरो अब सुनत हैं स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम, विषय है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। और ई योजना में जो हितग्राही वे हैं प्रदीप परमार, जो के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला सीहोर से हैं, और इनसे बात करी है मनोज सक्सेना भैया ने, जो एक स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये भोपाल से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है हीरापुर। जी हाँ, हीरापुर आज पहचाना जाता है दूध के क्षेत्र में। नाम हीरापुर है लेकिन यहाँ दूध का उत्पादन हमारे साथ जो सफल कृषक हैं, उन्नत कृषक हैं, वे कर रहे हैं। और उनसे हम जानते हैं कि ये दूध का जो बड़ा कारोबार खड़ा किया गया है, इसके पीछे उनका संघर्ष क्या है, किस तरीके से उन्होंने ये काम किया कि आज क्षेत्र में इनकी डेयरी को जाना जा रहा है। हमारे साथ हैं गोरेलाल जी परमार।
2: नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम है गोरेलाल जी परमार, ग्राम हीरापुर, तहसील जिला सीहोर। मैं दूध का कारोबार करता हूँ, छोटे से उससे स्तर से मैंने स्टार्ट करा। और सीहोर में भी हमारा एक काउंटर है छोटा सा, और अगल बगल से दूध भी लाते हैं। और सब मतलब जो है सिस्टम, पशुओं की देखभाल, नए पशु लाना ले जाना, और दूध का मावे का सब, घी वगैरह का भी सब कारोबार शुरू करा है हमने। और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा कारोबार चल रहा है हमारा, और अच्छा लग रहा है हमें।
1: गुरुलाल जी, जैसा कि हम आपका ये कारोबार पूरा देख रहे हैं, काफी नाम है और बहुत सारी, मैं देख रहा हूँ मशीनें लगी हुई हैं, बहुत सारे आपने सब संयंत्र लगा रखे हैं। ये जो शुरुआत आपने की थी वो कब की थी आप?
2: मेरे को ये तो जानकारी नहीं है, और मेरे को 40 साल लगभग होगा।
1: जी, तो 40 साल पहले जब शुरुआत करी होगी तो आपने किस तरीके से काम शुरू?
2: मैंने पैदल दूध लाया ग्राम पीपलनेर से, और हाथ में डिब्बे सिर पे रख के, रोड का भी साधन नहीं था।
1: अच्छा।
2: फिर साइकिल ली धीरे से, साइकिल से बाटी सीहोर में मैंने होटल पे दूध दिया। फिर एक छोटा सा काउंटर लिया और वहाँ दुकान डाल के अब आहिस्ता मतलब सब काम मतलब वहाँ से शुरू
1: किया।
2: जी,
1: मतलब आपने 40 साल का संघर्ष इस पूरे प्रोजेक्ट पे हमें दिखाई दे रहा है।
2: हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा है साहब, बहुत बड़ी क्या
1: जी।
2: हाँ, मतलब जो है
1: एक चीज और है
2: जी,
1: कि पहले जब आप कह रहे हैं ना कि सिर पर दूध रख के हम ले जाते थे,
2: जी,
1: संसाधन बढ़े, सड़कें अच्छी हो गई, फिर आपके वाहन भी बढ़ाए होंगे आपने, तो उस समय कितनी गाय आपके पास होती थी?
2: उसमें लगभग हमारे पास में 20 से 25 थी, फिर धीरे धीरे हमने बढ़ाई, तो आज हमारे पास 100 से 150 जानवर भी हैं, और लोगों को हमने अगल बगल जो अपने सदस्य हैं उनको दिलवाए भी। हाँ, सबको मतलब जो है रोजगार से लगाया हम लोगों ने। हाँ, और बच्चे उनको भी लगाया, बच्चे आज ऊंची स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे हम।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस समय हम हैं भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर हीरापुर गांव, जहां की गोरेलाल दूध डेयरी है वहां पर हैं। हमने गोरेलाल जी से भी बात की कि उन्होंने किस तरीके से इस डेयरी की शुरुआत की थी। कहते हैं ना कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कारोबार जाता है तो वह किस तरह से बढ़ता है, उसका प्रमाण यहां देखने को मिलता है। उनके बेटे हैं हमारे साथ प्रदीप परमार जी। प्रदीप जी, पिताजी ने कारोबार शुरू किया, फिर आप लोग बड़े हुए, आपने उस कारोबार को बढ़ते हुए देखा, फिर आज आपने संभाल लिया है।
3: जी बिल्कुल।
1: आपने क्या क्या बदलाव कर दिया इसमें?
3: हमने बदलाव, जैसे पापा पुराने तरीके से चीजें करे जा रहे थे,
1: जी,
3: आज हमने उसको एकदम नए तरीके से कर दिया है। जैसे कि अभी पशुपालन में हम जैसे गिर साहिवाल इस पे काम कर रहे हैं, A2 दूध पे हम काम कर रहे हैं, इसका जो घी बनेगा वो मार्केट में जाए, अच्छी चीज पहुंचे, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं, पैकिंग हमारी अच्छी हो। और अभी जैसे हमने उद्यानिकी विभाग के द्वारा एक प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, जिसमें हम दूध से बने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मावा, घी, पनीर, दूध, रबड़ी और अन्य तरीके की मिठाइयाँ, वो सब हम बनाने का हमारे यहाँ इस प्लांट में पूरा काम कर रहे हैं इसी में।
1: अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए मुझे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जब शुरुआत थी तो वाकई पैसे का अभाव होता था, सरकारी योजनाओं का आपने लाभ लिया होगा, कौन सी योजना आपने ली जिससे कि आपको
3: हमने योजना पीएमएफई योजना के अंतर्गत ये हमारा लोन हुआ है, उसी से हमने ये प्लांट का प्रोसेसिंग मशीन है उसी के अंतर्गत लगाई है।
1: अच्छा अच्छा जी। दूध उत्पादन आपके पास प्रतिदिन कितना हो जाता है?
3: दूध प्रतिदिन 2.5 से 3 हजार लीटर दूध हो रहा है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट किसान भी जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा।
3: हाँ, जैसे हमारे कलेक्शन पॉइंट है 2-3 गांवों में, तो जो भी किसान जिसके पास भी मवेशियाँ होती हैं तो वो हमें कलेक्शन पॉइंट में दूध ला कर देते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं और उसी का हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पूरा प्रोसेसिंग
1: 2.5 से 3 हजार लीटर आपका दूध हो जाता है, फिर इसको आप बाजार में बेचते हैं?
3: हाँ, बाजार में बेचते हैं। इसके दूध जाता है वो अलग है, इसके हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं।
1: कौन कौन से?
3: जैसे मावा, पनीर, दही और मिठाइयाँ, तो ऐसे अन्य तरीके के हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसलिए हमें
1: उससे आगे आपको सहायता मिल रही
3: जी जी।
1: गुणवत्ता को आप कैसे ध्यान में रखते हैं? क्योंकि दूध की शुद्धता को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। जैसे अभी प्लांट में हम पूरा मतलब केप पहनाकर, ग्लव्स पहनाकर और सारी चीजें हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, पूरा हाइजीन मेंटेन 100% रहता है।
1: जैसे मैं अभी देख रहा था कि आपके यहाँ कुछ नया काम भी चल रहा है, अभी कुछ नया कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ नई मशीन्स आ रही
3: हैं। जी जी,
1: तो ये क्या है?
3: ये अभी जो पुराने हम जो और हम हाईटेक मशीनों में जा रहे हैं।
1: अच्छा।
3: जैसे कि बहुत जल्द काम हो जाएगा, जैसे 1 घंटे का काम हम आधे घंटे में कर लेंगे, तो इस तरीके की हम कुछ अच्छी मशीन लेकर आ रहे हैं, तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए हमें मशीन को चेंज करना पड़ा।
1: आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद हम और पढ़ाई करते और कुछ नया कुछ करते और फिर हम जाके कहीं बड़ी कंपनी में नौकरी करते, वो अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है?
3: ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये हमारा खुद का है, तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पिताजी ने इतना किया है तो हम उसको और आगे बढ़ाएं। तो यही हम कोशिश करते हैं कि इसको हम बड़ी कंपनी बनाएं।
1: वाह, आपकी एजुकेशन कहाँ तक है?
3: मैं ग्रेजुएशन है, बीबीए किया है मैंने।
1: बीबीए किया हुआ है। मित्रों, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें और उससे खुद का रोजगार तैयार करें, हम खुद स्वरोजगार बने और लोगों के लिए रोजगार दें। कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं?
3: हमारे यहाँ अभी 20 से 25 लोग तो फार्म में हैं, बाकी और जो हमारे कलेक्शन पॉइंट पे लगे हुए हैं, तो ऐसे करके हमें कम से कम 40-50 लोग इनडायरेक्ट जुड़े हुए
1: जी काम कर रहे
3: हैं। हाँ।
1: मतलब आपने 40 से 50 लोगों को रोजगार।
3: हाँ, और बाकी अगर ऐसा अगर अपन किसान और सारा उसको देखा जाए तो ऐसे तो 300-400 लोग जुड़े हुए हैं।
1: वाह। अच्छा, मार्केटिंग का सूत्र क्या है आपके पास?
3: मार्केटिंग का यह है कि हम खुद ही मतलब होम डिलीवरी देते हैं। अगर कोई हमें कस्टमर बोलता है कुछ, तो हम डायरेक्ट हम उनके पास हम खुद ही जाकर देकर आते हैं।
1: अच्छा, अच्छा
3: जी जी।
1: अच्छा, कभी कोई किसी कस्टमर की शिकायत आ गई कि उनका दूध फट गया?
3: हाँ जी,
1: होता है ना।
3: हाँ, बिल्कुल होता है।
1: कई लोगों को संतुष्टि नहीं हो पाई, तो फिर आप उसे कैसे संभालते हैं?
3: वो उनको फिर संभालना थोड़ा सा समझाना पड़ता है। हाँ, बहुत मतलब उनको समझाना पड़ता है कि भैया कुछ हो गया होगा, गलती हो जाती है, या कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम सर्फ से बर्तन धोना या उसमें कुछ छूट जाता है तो उससे भी दूध फट जाता है,
1: वो उससे एंड पर हाँ, भी हो सकता है।
3: हाँ हाँ, वो तो या तो अगर हमसे कोई गलती हुई हो या उनसे कोई, तो दोनों से कुछ ना कुछ गलती हो सकती है।
1: मतलब इसमें विनम्रता बहुत जरूरी है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर इसमें बात बिगड़ सकती है फिर अगर गड़बड़ होता है तो।
1: अच्छा, जैसे इतने सारे पशु आपके पास हैं, आपने कहा साहिवाल हमारे पास है, गीर भी आपके पास रहती हैं, अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस नस्ल को आपने अच्छा माना?
3: साहिवाल और गीर को, जो कि हमारे फार्म में है।
1: अच्छा अच्छा
3: जी, अच्छे जी। अच्छे हाँ, अच्छे दूध और इसकी मार्केट में डिमांड भी है।
1: एक आदर्श डेयरी बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं होना और किस किस बात का ध्यान रखना जरूरी है?
3: आदर्श डेयरी बनाने के लिए हमें पहले तो ये देखना होगा कि पशु के लिए हमें एक पशु के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, उसके लिए अगर बैठने के लिए हमें एकदम पक्का नहीं होना चाहिए, उसके लिए कच्चा भी होना चाहिए और शीट उसके नीचे एक शीट डली हो ताकि उसको बैठने के लिए आसान हो जाए। शीट का एक माप होता है 4x6, तो एक पशु के लिए इतनी जगह सफिशियंट होती है। उसके स्वस्थ रखने के लिए उसको नहलाना पड़ता है क्योंकि मक्खी ना बैठे, और ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि
1: ऐसा कहते हैं बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशु जो हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है।
3: हाँ,
1: तो फिर उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं?
3: कैल्शियम की टेबलेट्स आती हैं और दवाई आती है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसका यूज करते हैं।
1: तो आपके यहाँ पशु चिकित्सक आता है?
3: हाँ जी, हाँ जी, और नियमित रूप से आते हैं,
1: वो जांच करते हैं।
3: जी जी, बिल्कुल।
1: जो हमारे युवा साथी आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक में आए और अपने गांव की चीजें को शहर में लेकर जाएं, ताकि सभी को पता चले कि ऑर्गेनिक चीजें भी और हमारे गांव से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में नहीं है, नहीं पहुंच पाती है। मार्केटिंग हमें अच्छे से करना चाहिए। तो यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग गांव की जो चीजें हैं वो मार्केट में लेकर जाएं।
1: मार्केट
3: जी जी।
1: अच्छा, अब इसको और किस ऊंचाई तक ले जाने की योजना है आपकी?
3: अभी हम जैसे सीहोर और भोपाल में काम कर रहे हैं, तो इसको हम ये चाहते हैं कि और 5-7 शहरों में हम इसको बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्शन धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
0: तन भैयारो, आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती के बारे में। संरक्षित खेती एक ऐसी आधुनिक कृषि तकनीक है जिसमें फसल को एक नियंत्रित और ढके भय वातावरण जैसे कि पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस में उगाव जाते हैं, जिसे कि पौधन पे अत्यधिक ठंड, तेज धूप, बारिश, कीट और रोगन को बुरा प्रभाव ना पड़े और उन्हें बचाव जा सके। संरक्षित खेती को लाभ है कि जिस साल भर इमें हम बिना मौसम के कोई भी फसल या सब्जी फल उगा सकते हैं, ठंडी में पाले से, गर्मी में तेज धूप से और कीटन से फसल को बचा सकते हैं। सामान्य खेती की तुलना में 5-12% अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार हमें मिलत है। ड्रिप सिंचाई के इस्तेमाल से पानी और खाद की बहुत ही कम खपत होते, बाजार में अच्छी गुणवत्ता

0: वाली फसलें बेच के किसान भैया हरे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: सो भैया बिना हरो जे हतो हमाओ आज को किसान बानी कार्यक्रम। अब आज्ञा दो रीता बहन को, राम राम।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनेंगे। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद में आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे पद हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय

0: जाएगा।
1: चर्चा में बीजत के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुच शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्यराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजत के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्यराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खरगे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खरगे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 तक और फिर दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने उड़ीसा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात उड़िया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और

राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खरगे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वें विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि NCDC का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब NCDC प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत NCDC को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए।
श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अभी आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे कहते हैं क्या है?
3: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है जी, जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो है उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो है वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे, उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दे। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेकअवे है, जिसे आपने कहा, वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने ये ऐलान तय कर लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स

0: टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30%, ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
2: ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू अ फॉरेन कंपनी प्रोक्योरिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेंटर। And this exemption is provided up to the year ending 31st March 2047. Long-term certainty so that investments come. These are big-ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem again of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. There is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
1: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो UPI हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ है, जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने यूजर्स के लिए अभी भी UPI का इस्तेमाल मुफ्त ही बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
0: इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है। वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007
1: जी,
0: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा, और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था UPI। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने ये तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देनी पड़ती है, वो करीबन 0.5% होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत्व व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि UPI की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है
1: जी।
0: तो सरकार ने यह सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने यह सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाए जिससे कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये UPI को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इन्फोर्स कर सकता है। पर सरकार ने ये भी अलर्ट कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है तो उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी
3: जी।
0: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये MDR का जो इंट्रोडक्शन, ये आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा। ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमिटी है, वो कमिटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
2: विल कंस्यूमर्स पे एनी UPI चार्ज? नो, UPI has remained free for consumers since its launch and every Indian will continue to make instant digital payment without paying a transaction charge. चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, टेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर MDR चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू UPI's इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई MDR लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर MDR विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबाउट अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान के लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय हैं इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान हैं इस विधेयक में?
0: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है जिससे कि करीबन 15 साल का, मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और वो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी, उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।
1: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षण का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
0: देखिए, ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है, अगर वो अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन हो
1: जी,
0: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इंपोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं
1: जी।
0: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के दौर ये देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और भिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गीत, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम में। आइए अब सुनवाते हैं आपको समीर का लिखा यह गीत। नदीम श्रवण का संगीत है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने इस गीत को गाया है। फिल्म का नाम है सपने साजन के।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और शासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
3: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
2: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
4: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है?
2: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान इसकी कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
6: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा, भागना नहीं है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
7: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
2: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
8: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन फैक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठक और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
8: पाकिस्तान के कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
2: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
9: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
2: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायता करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निजाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदादी बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए NCDC बिल को भी मंजूरी दे दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टेमिस मुआहदे के तहत अपने अहम मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो फख्र के साथ यौम आज़ादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा की जानिब से ट्राइब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को आज मंजूर किए जाने के बाद इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। दूसरी मर्तबा मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल पेश किया। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात नीज खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में कई अराकीन ने अवामी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मामलात उठाए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद सदर नशी ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा ने केरला तब्दीली नाम बिल 2026 को आज मंजूरी दे दी। ये बिल आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानूनसाज असेंबली ने जून 2024 में करारदाद मंजूर की थी। बिल पर इजहार ख्याल करते हुए दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने कहा कि केरला कानूनसाज असेंबली की 2024 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त इसलिए की गई थी क्योंकि मलयालम जबान में रियासत का नाम केरलम है, जबकि आईन में इसे केरला लिखा गया। ऐवान ज़ेरी ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन बिल 2026 को भी मंजूरी दे दी। इमदाद बाहमी के वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने बिल पेश किया, जिसका मकसद कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन कानून 1962 में मजीद तरमीम करना है। ये बिल कॉरपोरेशन को सनती अशिया के मैदान में अपनी सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत देता है। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान ये दोनों बिल बिना किसी बहस मुबासे के मंजूर कर लिए गए। कामकाज मुकम्मल होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। हुकूमत की जानिब से तलबा के मामले पर मुबाहिसे की तैयारी की यकीन दहानी के बावजूद कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी। अपोजिशन के शोरगुल और हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ऐवान की कार्रवाई में रखना अंदाजी पर दुख का इजहार किया। जनाब बिरला ने जोर देकर कहा कि ऐवान

0: की कार्रवाई बहस मुबाय से और ताउन के जरिए चलती है। लोकसभा ने अपोजिशन की हंगामा आरई के दौरान केरला तब्दीली नाम बिल 2026 और कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी। वहीं राज्यसभा ने भी ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 मंजूर कर लिया। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी एजाज की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने इस बिल को गुज़श्ता महीने मंजूर किया था। ये बिल दफा 3 के तहत वंदे मातरम को तहफ्फुज़ फराहम करता है और इसे कौमी तराने की तरह यकसां कानूनी दर्जा देता है। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन गया है। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों पर तलबा के एहतजाज पर बहस से बचने का ये कहते हुए इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट इहाते में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने तलबा के एहतजाज से मुतालिक तफसीली बहस के लिए कल एक पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह भी अपोजिशन की जानिब से उठाए गए मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसमें सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पवन खेड़ा ने मुबैना तौर पर कहा कि वजीर दाखिला इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। भारत ने आज ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अटूट और कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है और इस सच्चाई को कोई तब्दील नहीं कर सकता। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात में भारत ने हमेशा बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वो इन मामलात को सबसे संजीदा मानता है।
3: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: जनाब जायसवाल ने मुतला किया कि भारत ने बांग्लादेश के वजीर आजम तारक रहमान को बाहमी दौरे के साथ साथ नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स आउटरीच इजलास के लिए दावतनामा भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के वजीर आजम से मुलाकात की और तरफेन ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलाई तहकीक की अमरीकी एजेंसी नासा ने आर्टेमिस माहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के तौर पर खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। इस माहदे के तहत भारत और अमरीका ओपन साइंसी डेटा साझा करने पर तआवुन से मुतालिक बातचीत को आगे बढ़ाने पर रजामंद हो गए हैं। भारत ने 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के सदर दफ्तर में भारत अमेरिका सिविल खलाई मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की नवी मीटिंग की मेजबानी की। इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमेरिकी सफीर सर्जियो गोर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पहल के तहत सिविल और तजारती खलाई इश्तराक में पेशरफ्त हुई। फरीकैन ने गुज़श्ता साल नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR के मुश्तरका तौर पर कामयाब लॉन्च के बाद बढ़ते तआवुन पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने साइंस और मुस्तकबिल में खला में इंसान की परवाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तआवुन पर भी बातचीत की। फरीकैन ने बाहरी खला की सरगर्मियों की तवील मुद्दती पायदारी से मुतालिक बाहरी खला के पुरअमन इस्तेमाल की अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी COP UOS के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ने की अपनी अहदबस्तगी को दोहराया। इसके अलावा फरीकैन ने कमेटी की असर पजीरी की यकीन दहानी के लिए जारी कसीर जहती कोशिशों का भी जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमवतनों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत की तामीर का अहद करते हुए फख्र और शान के साथ यौम आजादी मनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए जनाब मोदी ने हर शहरी की साथ आने और मुल्क के मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश करने के लिए हौसला अफजाई की। इसके अलावा वजीर आजम ने सभी से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने पर भी जोर दिया।
4: 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टिटवाल के मकाम पर आज अजीम शान तिरंगा रैली मुनक्कद की गई। रैली की खसूसियत 1200 मीटर लंबा कौमी परचम रही। रैली में स्कूली तलबा, असातज़ा, साबिक फौजियों, सिविल और पुलिस अफसरान, सिविल सोसाइटी अरकान और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। शुरका ने तिरंगे के साथ हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए मार्च किया। आज बीजेपी की जानिब से किए गए झारखंड बंद का रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी के मामूलात पर असर पड़ा। पार्टी के वर्कर कल असेंबली मार्च के दौरान तलबा पर हुए मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तलबा के एहतजाज को 18 दिन हो गए हैं और एहतजाज कर रहे तलबा जेपीएससी और जेएसएससी इम्तहान को मनसूख करने, सीबीआई तहकीकत और भर्ती के अमल में इसलाह की मांगों को दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर क़ब्ज़ा जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा ताकि सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को आगाह किया जा सके। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में कश्मीरियों पर रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी इक्तदार की जानिब से मुबैना तौर पर ताकत के इस्तेमाल की जानिब तवज्जो मबजूल कराने पर जोर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिस दिन पाकिस्तान का यौम आजादी भी है। एहतजाज का सिलसिला 2 महीनों से जारी है और इसका कोई हल दिखाई नहीं देता। मुजाहिरीन ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर 60 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया है और 500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, गोवा और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कल दोपहर से शाम तक कौमी राजधानी में कुछ मकामात पर बहुत हल्की बारिश के साथ साथ आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। शदीद बारिश की वजह से चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब रियासत की 2 कौमी शाहराहों और 204 दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मौसमियात के महकमे ने आइंदा 24 घंटे के दौरान 5 अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके पेश नजर इंतजामिया ने लोगों से दरियाओं से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड्स, शहरियत और पनाहगुजनी समेत इमिग्रेशन से मुतालिक मुतादिद फवायद हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अमल को लाजमी बनाएगा। इस इकदाम का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और ऑपरेशनल अखराजात को कम करना है। अमेरिका की शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात से मुतालिक महकमे ने कहा है कि एक हुक्म के मुताबिक ऐसे फॉर्म्स जो कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए दस्तयाब हैं उन्हें ऑनलाइन जमा कराना जरूरी होगा। टेनिस में कनाडा ओपन 2026 में आज साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांटेक खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 6 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। जुमेरात के रोज अब सेमीफाइनल में श्वांटेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वें दर्जे की खिलाड़ी एलिना स्वीटोलिना से होगा। स्वीटोलिना एक दीगर क्वार्टर फाइनल में रूस की इकातेरिना अलेक्सेंद्रोवा को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के सिंगल्स में आज क्वार्टर फाइनल में इटली के 19वें दर्जे के लुचानो दुर्देरी का मुकाबला अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल निज़ाम की कारकर्दगी और शफाफियत में बेहतरी लाने की खातिर बिल मंजूर कर लिया है। इसने कौमी ट्राइब्यूनल कमीशन की तजवीज़ पेश की है। लोकसभा ने अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान रियासत केरला का नाम बदलकर केरलम करने से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। इसने इमदादे बाहमी इदारों के फरोग को वसत देने के लिए एनसीडीसी बिल को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन के साथ मजबूत रिश्तों के लिए सरहदी इलाकों में अमन सुकून लाजमी है। उसने ये बात दोहराई है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। नासा ने आर्टिमिस माहदे के तहत अपने अहम मून इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसरो को मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वह फख्र के साथ यौमे आज़ादी मनाएं और विकसित भारत की तामीर का अहद करें। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जुमेरात से आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें सरकार की शह वाली दहशतगर्दी से दुनिया को बावर कराने के लिए आलमी सतह पर रैलियों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, महफिल समा में आज का मौजू है शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी हयात व खिदमात। सामईन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी सन 1480 में शहर बुरहानपुर में पैदा हुए। आबाई वतन शिराज हिंद जौनपुर था। शेख अली मुत्तकी की परवरिश नहायत ही नेक साले दीनदार माहौल में अपने वालिद के जेर आफियत हुई, जो उस इलाके के मारूफ आलिम दीन थे। लेकिन अभी शेख अली मुत्तकी 8 बरस के ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। लेकिन शेख ने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया की तमाम मुश्किलात का सामना पूरी कुव्वत और जवां मर्दी के साथ किया। लेकिन आप रातो दिन ज़ाते बारी ताला से लौ लगाए रखते, जिसके नतीजे में आपको महसूस होने लगा कि ये दुनिया यकीनन एक रोज खत्म हो जाएगी। जिंदगी का सूरज एक दिन जरूर गुरूब हो जाएगा। दुनिया दारुल अमल और आखरत दारुल जजा है। इस एहसास ने आपके जमीर और अंदरून को झिझोड़ कर रख दिया। फिर उन्होंने हिसामुद्दीन मुत्तकी के यहाँ मुल्तान में दरसो तदरीस और तरबियत बातनी में दिन गुजारे। फिर गुजरात वापस तशरीफ लाए और अहमदाबाद में इकामत पजीर हो गए। फिर रिश्ते इस दिवास से मुंसलिक हो गए। फिर अपनी अहलिया और दीगर अहले खानदान के साथ जिंदगी गुजारी। उस बीवी से एक बेटा भी हुआ जो लड़कपन में ही दारे फानी को कूच कर गया। फिर शेख अली मुत्तकी ने मदीने में सुकूनत इख्तियार की और मक्का चले गए।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू की आवाज़ में कव्वाली ईमा की रोशनी है मोहम्मद के शहर में समात फरमा रहे थे और कलाम था पयाम सईदी का। मक्का मौजमा पहुंचकर शेख अबुल हसन शाफी की खिदमत में हाजिर होकर मजीद इल्म शरीयत और तरीक़त पाया और फिर शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद सखावी की खिदमत में रहकर सिलसिलाए आलिया कादरिया का खिरका हासिल किया और हदीस की सनद शेख शहाबुद्दीन अहमद बिन हजज मक्की से हासिल की और मक्का मुअज्जमा में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपने कंजुल उमाल नामी किताब मुदव्वन और मुरत्तब फरमाई। ये किताब आपका अजीम इल्मी और दीनी शाहकार है। साथ ही आपने अहादीस मुकर्ररा को छांट कर मुंतखिब कंजुल उमाल भी तहरीर फरमाई। इन किताबों को देखकर आपके शेख अबुल हसन शाफी ने फरमाया था कि इमाम सियूती ने जमउल जवामे लिखकर तमाम लोगों पर एहसान किया था, लेकिन शेख अली मुत्तकी ने कंजुल उमाल की तदवीन फरमाकर उन पर

और कुछ घर की भी है मुसलमान, खुद तुम्हारे भी बहन और बहनोई घर बहन के पहुंचे गुस्से में उमर ये सुनते ही। दर पे जब पहुंचे सदा कुरान पढ़ने की सुनी

फिर ये उम्र कि तुमने मजहब अपना बदला है, ये मुझको है खबर। ये कहा गुस्से में और दोनों को मारा इस कदर, छली जख्मों से बदन था, खून से था जिस्म तर। ये बहन बोली तू चाहे हमको मारे जान से, जीते जी हम फिर नहीं सकते कभी ईमान से। उनका दिल थर्रा गया ये जोश ईमान देखकर, गर्क इबरत हो गई ये हमशीरा से बोले उमर। तुम जो कुछ पढ़ती थी वो आयात ला

दोस्तों, अभी आप कव्वाल मास्टर हबीब निजामी से कव्वाली ए हसीना तुझे मशहूर किया मैंने समाअत फरमा रहे थे, और कलाम था अनवर फर्रुखाबादी का। सामीन, शेख अली मुत्तकी बुरहानपुरी के साज़ा की एक तवील फहरिस्त है। आपके तलामजा की भी बड़ी तादाद है जिन्होंने आपसे शर्फ व तलम्मुज़ हासिल किया। आप नहायत कसीरुल मुजाहिदा थे, पूरी उम्र ज़ोहद व तवक्कुल में गुजारी। आपका विसाल 2 जमादिल आखिर 975 हिजरी सुबह सादिक के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और वहीं तदफीन की गई। दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कहकशां सुनना ना भूलें और अपने तासुरात व ख्यालात से हमें इस पते पर ज़रूर आगाह करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: माननीय सभासदो, माननीय सभापति जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 241, श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
3: प्रश्न संख्या 241, क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
2: Now, honorable minister, they never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, no, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except the Gargeji. I am always under the pressure of Gargeji, not of anybody else. Honorable Minister, first supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji. Then first supplementary, G.C. Chandrasekhar ji. You take your seat, I am calling him.
4: Sir, Mike.
2: You take your seat, I am calling him.
4: Mike.
2: First supplementary, Shriman G.C. Chandrasekhar ji.
4: Sir, kindly do not ask the mic till you complete my question, sir.
2: I am allowing you. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji. I
5: am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji. कि ऑफ शोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
3: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
6: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-55% और गुजरात में 30-40% तक उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माने अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है, तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और लाभ पैदा होते हैं और इसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेदर, फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक्स और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
7: द थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुधा मोदी जी।

अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत फिल्म जानवर से। इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा से। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। फिल्म का नाम है आरजू।

शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए फिल्म संगम से। लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं देवेंद्र मुरडेश्वर का बांसुरी वादन। राग है पुष्प चंद्र का।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.5 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।